0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: बार बारूद सा भरल गाड़ी के दरांजदा मेमून मेला चेक पोस्ट सा टकरायो शहीदन में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर बोर तू एक बार भी शामिल जख्मियों के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस से फायरिंग बरजाकार शहीद टे जख्मी सिक्योरिटी फोर्स इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ गरू वजीर मोहसन नकवी एन पना चेक पोस्ट हमले की मज़म्मत इंसानी जानों के नुकसान से दुख जो इजहार दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्जाओ

लॉन्ग मार्च खां पोइ ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि त पहिरें छो नथियूं कयूं वञनि। केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी वफ़ाक़ी हुकूमत खे ॻाल्हियुनि जी आछ करे छॾी। पिशावर में सीनियर सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सुहेल आफ़रीदी चयो त लॉन्ग मार्च में अञा 7 ॾींहं आहिनि, पोइ बि ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि त हाणे छो नथियूं कयूं वञनि। ॻाल्हियुनि लाइ पहिरें बि तयारु हुआसीं, हाणे बि आहियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत असांजी एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हि थियण न ॾेई रही आहे। मुल्क में हिकु शख़्स जी ॻाल्हि हले थी जंहिंजो नुमाइंदो मोहसिन नक़वी आहे। दड़े वेझो बेलो रोड ते चारण गोलाई वटि हथियारबंदनि जी गाॾी ते फायरिंग। 15 वीरनि जी निगरी मारिजी वई। फायरिंग सबब कतुल थियल निगरी जी सुञाणप मुर्क महमूद तौर कई वई। मडरूल हेल्थ सेंटर दड़ो पहुचायो वियो। वाके जे इतलाह ते शहरियुनि जो वॾो अंग पिण पहुची वियो। शहर में बदमनी ते गणती जो इज़हार, जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। ऐं सिंध सूबे जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अरबे रुपया बजेट हुअण बावजूद मकानी इदारनि जे कारगर्दी सुवाल या निशान बणियल। मलेर ज़िले जे टिन टाउननि ट्री यूनियन कमेटियुनि ऐं कराची मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन इंतिज़ामिया जा अरबे रुपया आवाम खे को बि लाभ न ॾेई सघिया। इब्राहिम हैदरी गडाप ऐं मलेर टाउन म्यूनिसिपल कार्पोरेशन इंतिज़ामिया जे सालाना 12 अरब रुपियनि खां वधीक बजेट हुजण जे बावजूद शहरी ऐं ॿारनि जा इलाइक़ा खंडरात जो मंज़र पेश करण लॻा। मकान इदारनि जे नाले सबब शहरी पीअण जे पाणी, रोडनि रस्तनि खां महरूम, सफ़ाई जो निज़ाम तबाह, खुलियल गटर इंसानी ज़िंदगियूं गड़काए रहिया आहिनि। शहरियुनि जो चवण आहे त टाउननि ऐं यूनियन कमेटियुनि में ग्रेड 1 खां 17 ग्रेड ताईं सवे मुलाज़िम बजेट ते ॿार आहिनि, जेके मिली भगत करे करोड़नि रुपया खाई वञनि था, पर इलाइक़नि ते टको ख़र्च नथो कयो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2526।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: Network, Zindagi Awaaz.
1: Zindagi Guzario, Etmad Sa, Quran Ke Samjhi, Budhanda Raho, Dr. Farhat Hashmi Jo Program, Taleemul Quran, Rozano Subhu, 9:55 Te, Sirf GFM 88 Network Te.
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 and 0312-24-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पर ट्रियाकड़ी कंदड़न जरिए जवाब न मिलियो आए. ईरान ट्रियाकड़ी कंदड़न तरफा हतमी मौकफ जान जो मुंतजर आए. इन ही बुनियाद ते असी फैसलो कंदासी. ट्रंप पारा अमेरिका में मिड टर्म चूंडन खां पो बीहर हमलन जो इशारो डिनो. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी बाबत ईरानी तजवीज रद्द करण की तस्दीक कर छी. ट्रंप है तो ईरान जंग हाराए रो है. आबना रूम्स भी खोलने लाय तैयार थी वो है. मां पान मुआदो चाहें तो ईरानी डील कबूल न है. ट्रंप बीहर आबना रूम्स के ट्रंप स्ट्रीट जो नालो दई छो. तस्वीर समाज वेबसाइट ते जारी कर छी. केपीए के इलाके डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट भरसा आपघाती हमलो. छह पुलिस अहलकार समेत 12 जना शहीद. 35 का वधीक जख्मी. आपघाती बमबार बारूद से भरल गाड़ी के दराजांद में अमन मिला चेक पोस्ट से टकरायो. शहीदन में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर बिन औरतन एक बार भी शामिल. जख्मी के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस से भी फायरिंग. बरजाकार शहीद. टे जख्मी सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन कर छो. सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ घरू वजीर मोहसिन नकवी बेन पारा चेक पोस्ट से हमले की मजामत. इंसानी जान के नुकसान से दुख जो इजहार. दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम जो वर्जा. बलोचिस्तान के शहर डेरा बुगटी में जिले चेयरमैन के घर से हमलो. जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मार छह गिरफ्तार. अमन फोर्सेज जो एक रजाकार शहीद. टे जख्मी थी पिया. दुकी में रोड तमीर कंदड़ कंपनी के कैंप ते दहशतगर्दन जो हमलो. अरणा पोरे तगवा फायरिंग की डेवट दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद भी जख्मी. केटीएन न्यूज खानपुर जो रिपोर्टर अजीम सियाल मुबैना तौर अगवा. अजीम सियाल के कार पनो अकिल भरसा सदूजा थाने वटा मिली आए. वारसन जो चवण है तो कार के शीशे के रत लगल है. गुपचाणी में वाह में बुढ़ी फोत जनल नौजवान के कतल करण जो इल्जाम. वारसन जो चवण है तो परवेज के तशद करण बाद कतल कर लाश वाह में लोड़ियो. शफाफ जांच कर जवाबदार गिरफ्तार किया वे.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली आस पास की आवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-252-5786।
5: जी हा 2311-2525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का टाइम तो वैसे खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी गुड मॉर्निंग हमारे लिए होती है क्योंकि है संडे का दिन और संडे के दिन है बहुत सारी बातें आप और मेरे साथ जिसके सुन रहे हैं FM88 और जिस तरह के साथ आप मौजूद हैं। आओ बात करें मैं शामिल, तो जी आओ बहुत सारी बात करनी है, दिल की बात, खुशी की बात, हर बात यहाँ पर उनका वीक एंड डोज है, तो डोंट मिस इट। तो जी कैसे हैं आप सारे और सुबह का सलाम मेरा आप सबको, और आप लोग सारे कैसे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, कौन कौन मुझे ज्वाइन कर चुका है, काइंडली मुझे जरूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से ज्वाइन करते, ताकि मुझे और सुनने वालों को पता चल सके कि मेरे साथ कौन कौन मौजूद है और कहाँ से मौजूद है। क्योंकि आपको पता है अगर आप मुझे बताते हैं और जो सुन रहे होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि भाई हमारा नाम अनाउंस किया जा रहा है, तो बहुत खुशी होती है। इस खुशी को बरकरार रखने के लिए आपने मुझे कमेंट करना और SMS करना है, और कमेंट करके आपने मुझे बताना है कि आप मेरे साथ कहाँ से मौजूद हैं, कौन बात कर रहे हैं और किसके साथ कौन कौन सुन रहा है, क्या करते वक्त सुन रहे हैं, ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, सोते वक्त सुन रहे हैं, उठते वक्त सुन रहे हैं, नाश्ता करते वक्त सुन रहे हैं, या नाश्ता कर लिया है आपने, अकेले अकेले चाय शाय पी ली है, वो भी जरूर बताइएगा, और आज की क्या क्या आपकी एक्टिविटीज होने वाली है वो भी जरूर मुझे बताइएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मुझे ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले तो परेशान नहीं होना और सिर्फ मोबाइल उठाना टाइप करना है 888 पेज क्या लिखे, आप मुझे SMS कर सकते हैं अपने प्यार से शहर के नाम के साथ, सिटी के नाम के साथ।

और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाई जो मुझे लाइव कमेंट करना चाहता है, लाइव फेसबुक पे कमेंट करना चाहता है, फेसबुक को आपने ऑन करना है, जीएफ मेडिकल का पेज आपने ओपन कर लेना है और आज सेना के नाम का आपको फ्लायर आपको दिख जाता है। फ्रंट पे ही आओ बात करें मैं आप शामिल हो जाते हैं और आपने वहां पर जाकर मेरी आवाज को सुनना है बिना देर किए, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करके मुझे बताना कि मुझे शेयर करने वाले का पता चल जाएगा कि किसने मेरे पेज को लाइक किया और कमेंट किया और शेयर किया है। और अगर आप लोग नहीं करेंगे ऐसा तो मैं आपके कमेंट को रीड आउट ही नहीं करूंगी भाई। अच्छा जी, इसके अलावा होता है आज मेरे पास एक नया सवाल है। सवाल तो बहुत ही अच्छा है लेकिन कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार तो वही होने वाला है। अगर मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने इतना अच्छा मेरा सवाल है कि आपने उसका जवाब मुझे इजीली दे देना है, लेकिन अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो चीटिंग करेंगे तो आप ढूंढते रहेंगे सवाल का जवाब, लेकिन अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा उसका। तो बिना देर किए आपने क्या करना है, जाना है, कमेंट करना है और मेरे सवाल को सुनना है। सवाल सुनने के बाद आपने मुझे जवाब भी देना है और जवाब देने के साथ आपने क्या करना है ये बात आपको याद होनी चाहिए। हमेशा मैं आपको रोज बताती हूँ और चले मैं बताती रहूंगी। ओके, और क्या करना है आपने जाके कमेंट करना है मेरे जवाब को। जवाब को कमेंट करने के साथ साथ आपने मुझे देना है अपने प्यारे से पसंदीदा सॉन्ग का नाम। अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो मैं आपका सॉन्ग ऑटोमेटिकली प्ले कर दूंगी। जैसे ही वो प्ले हो जाएगा तो आप समझिएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। लास्ट में तो मैं वैसे ही बता दूंगी, लेकिन आपने अगर आप जवाब दे रहे हैं और अगर आप साथ उसका अपना पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बता देंगे तो ये वैलेंट गुड हो जाएगा। तो जी मैं आपका सॉन्ग प्ले कर दूंगी तो इट्स मैन आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही होगा, तो आपने क्या करना है मुझे जवाब दे देना है और सवाल सुनने के लिए जो जो इंतजार कर रहा है वो मुझे कमेंट करे और मुझे बताए कि कौन मेरे साथ मौजूद है। जब तक मैं भी देखती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन मौजूद है, कौन कौन मेरे सवाल सुनने का वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, आज इतवार का दिन, इतवार के दिन के लिए हम लोग पूरा पूरा हफ्ता इंतजार कर रहे होते हैं तो आज इतवार इंतजार हमारा खत्म होता है क्योंकि आज हम लोग साथ में मौजूद हैं। तो देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है, कौन कौन मेरे सवाल सुनना चाह रहा है। तो सवाल सुनने के लिए आपने देर नहीं करना, मुझे एसएमएस करके बताएं कि आप कौन कौन मेरा वेट में बैठा हुआ सवाल सुनने के लिए। आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो ही मैं आपको अपना अपना आज वाला सवाल बताऊंगी ताकि आज आप लोग विन हो सकें। टाइमली मुझे ज्वाइन किया करें और टाइमली आप मुझे जवाब दे दिया करें ताकि आप विनर बन सकें आज के मेरे सेगमेंट के। तो जो जो सुन रहा है वो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट करने के बाद मुझे बता सकता है कि भाई कमेंट जो जिसको मेरी आवाज जा रही है, जो मेरा मुझे सुन रहा है, मेरा शो सुन रहा है, वो मुझे कमेंट करके बताए कि भाई हम आपका सवाल सुनना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करें, यहाँ से मैं अपना सवाल बताऊंगी, आपने वहां से मुझे जवाब देना है और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बताना है, मैं आपका कर दूंगी सॉन्ग का प्ले। तो आप समझिएगा आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। जो मेरे लिए न्यू लिस्टनर होगा, मुझे लगेगा यार ये फर्स्ट टाइम है, तो उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉन्ग मैं वैसे ही फ्री चला दूंगी। तो और क्या याद रखेंगे आप लोग, जाइए मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए।

सुबह हो गई है, सारे जाग जाएं क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम है। लास्ट में जब आप लोग मुझे सॉन्ग का नाम बता रहे होते हैं तो मैं जब प्ले नहीं कर पा रही होती तो आप लोग कहते हैं कि यार हम लोग लेट हो गए थे, आप लोग बताते नहीं है, और आप लोग जो ना जवाब दे रहे होते हैं, फिर आप लोग शिकायत कर रहे होते हैं आपने मेरे पसंद का सॉन्ग नहीं चलाया था, मैं कैसे चलाऊं। आप लोग मुझे टाइमली जवाब देंगे तो ही तो मैं प्ले कर पाऊंगी जनाब। आप लोग जाइए, मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए, जब तक यहाँ पर हम सॉन्ग करते हैं प्ले।

यहाँ पर तो हम लोग एक सॉन्ग को करते हैं प्ले और सॉन्ग को सुनते हैं, सुबह को बनाते हैं बहुत हसीन आप लोगों के साथ। तो जी ऐसे है, कहते हैं कि चलो हम सॉन्ग एंजॉय कर लेते हैं। ओके जी, सॉन्ग को करते हैं एंजॉय, इसके बाद करते हैं बाकी की बातें। तो सवाल का जवाब तो मैं आप लोगों से लूंगी सवाल बताने के बाद, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे मेरे सवाल का कौन इंतजार कर रहा है। तो जी करते हैं सवाल को यहाँ पर स्टार्ट, सॉन्ग स्टार्ट, और जब सवाल करूंगी मैं इस सॉन्ग के बाद। ओके जी,

बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग और खूबसूरत सा सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे आपके साथ। तो जी अभी देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर टाइम होता है सवाल बताने का, तो मैं सवाल बताने लगी हूँ जनाब।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतन ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि छोटे से शोक मशक की तरफ जाएंगे, वैसे ही वापस आ चुके हैं हम लोग, यकीन आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। तो जी मैं आपको बताऊं कि और कौन हमारे साथ मौजूद है, देख लेते हैं पहले तो हमारे साथ और कौन मौजूद है। अच्छा जी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सलाम स्वीट सना खान, कैसी हो आप, शो नाइस, वॉइस नाइस, म्यूजिक नाइस, आप भी नाइस होंगी, आई एम वसीम। अच्छा वसीम कहाँ से बात कर रहे हैं आप जरा मुझे बताइए तो, ताकि मुझे और लिसनर्स सुनने वाले लिसनर्स को जो है पता चल जाए कि आप कहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कौन है आप। वसीम तो है, मतलब कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है। अच्छा जी बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे आप मुझे कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक और हमारे पास बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो हम वो सॉन्ग को भी सुनेंगे जी। यहाँ पर सॉन्ग को मैं करती हूँ प्ले, सॉन्ग को सुनते हैं साथ में, खानी का यूनिवर्सिटी सॉन्ग है तो मजे के सॉन्ग को करेंगे आज एंजॉय। सवाल जिसे मैंने अभी तक नहीं सुना, सवाल मैं अपना रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद सुनते हैं इस सॉन्ग को। सवाल मेरा ये था कि आपने बताना है मुझे उस शहर का नाम बताएं जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम भी बन जाता है। तो जाइए पता लगाइए और मुझे बताइए, और मुझे ज्वाइन करने के लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने क्या करना है, आपने टाइप करना है 888 पेज के लिखे विथ योर सिटी नेम और प्यार से नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मुझे यूट्यूब पे फेसबुक पे आप लाइव कमेंट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आपने ऑन करना है। फेसबुक जैसे आप ओपन कर लेते हैं तो वहां पर आपको मेरे नाम का फ्लैट दिख जाता है विथ आरजे सना के नाम से, आओ बात करें में शामिल आप हो जाते हैं बिना देर किए, बिना मेरी आवाज़ को सुनने के बाद बिना देर किए। आपने क्या करना है, जाके कमेंट करना है, लाइक करना है और कमेंट करके शेयर करना है आपने मेरे पेज को। मुझे पता चल जाएगा किसने मेरे पेज को शेयर किया और किसने नहीं, तो जाइए देर किए बगैर आपने मेरे पेज को शेयर करना, कमेंट करना और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी मुझे जरूर बता के भेजें, ताकि जिन अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो जहाँ पर वहाँ पर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर दूंगी। यहाँ पर सुनते हैं एक और सॉन्ग, जो रहेगा मेरे साथ।

0: कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर न लगे किसी की, बहुत दुख देखे उन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं।

0: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.

जी जैसा कि हमने कहा था कि हम जो छोटे से शौक में ब्रेक की तरफ जाएंगे वैसे ही वापस आ चुके हैं हम लोग, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो जी जो मेरा सवाल था, सवाल मेरा ये था कि आप लोगों ने मुझे बताना था कि भाई उस शेर का नाम आपने मुझे बताना था जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम बजे, तो क्या आपने अभी तक सोचा? आप लोग मुझे जवाब दें भाई, ताकि अगर आप मुझे जवाब देंगे तो ही तो मैं आगे चलूंगी भाई। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मैं अगर अपने सॉन्ग प्ले करूंगी फिर आप लोग लास्ट में मुझे बता देंगे जी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली उस टाइम। तो देखते हैं अभी हमारे कमेंट आना शुरू हो गए हैं। कमेंट्स मशहूर अहमद हमें करते हुए कहते हैं कि आज सनाजी सवाल का जवाब है सिटी का नाम। ओके ओके ओके, और कहते हैं ओके सवाल ठीक हो तो फैजा अली की आवाज का सॉन्ग आप सुनाइएगा। जरूर जरूर जरूर, हम लोग आपको सॉन्ग तो वैसे ही प्ले करते हैं। आपको पता है ये सिंगर का आज हमने सुबह सुबह प्ले नहीं किया तो सुबह हमारी लग ही नहीं रही। वैसे हकीकत बताऊं सॉन्ग हमने बहुत अच्छा प्ले किया था आते साथ, लेकिन सुबह सुबह जो आदत है वो नहीं हुई पूरी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ कहते हैं कि सना खान में मसान रोड रोडी से किराना स्टोर चलाता हूँ। अच्छा किराना स्टोर चलाते हैं जी। अच्छा अच्छा, तो किराना स्टोर आप चलाते हैं मसान रोड की, ये मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, लेकिन खैर है और खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया वहां से। तो ऐसे ही आप लोग मुझे ज्वाइन करते रहना है हर इतवार ओनली ओनली ओनली ओनली ओनली ओनली ऑन संडे सुबह 11 से 1 बजे तक रहता है मेरा और आपके साथ पूरे 2 घंटे के।

तो आपने आज भी ऐसे ही करना है जी, मेरे साथ हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग ऐसा मतलब जो है आज क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि टॉपिक आई थिंक वो सिटी है, ओके नाम बताते हैं लिखो तो, और उल्टा लिखो तो ओके जी जयपल। जी जयपल कैसे हैं आप, और बहुत टाइम बाद आपने ज्वाइन किया है। और साथ में कहते हैं सेपल कराची से, हेलो आरजे, हैप्पी वाली मॉर्निंग, नाइस डे, सुपर संडे, वेलकम, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में होने वाला था गुड इवनिंग, और उससे पहले आपने गुड आफ्टरनून, सॉरी, और आपने उससे पहले गुड मॉर्निंग कहती है, शुक्र है। और जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएंगे जयपल आप कैसे हैं। कराची से आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे और बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे ज्वाइन किया कि, और ऐसे आई होप कि आप मुझे हर इतवार ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे ओनली ऑन संडे, और जैसा कि रहता है मेरा आपको साथ पूरे दो घंटे के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक, तो ऐसे ही आपको भी जो है सुपर वाला गुड मॉर्निंग है संडे पे। तो जी नाश्ता शास्ता कर लिया आपने, चाय शाही पी ली है अकेले के या नहीं पी है आज आपने, क्या सब प्लान है, कराची का मौसम कैसा है मुझे जरूर बताएं। कराची में ठंडी हवाएं चल रही हैं कि नहीं चल रही, सर्दी आई है कि नहीं आई, गर्मी गई है कि नहीं गई है मुझे जरूर बताएं, या दोनों आपस में टकरा चुके हैं ये भी जरूर बताइएगा। और साथ में आपने जो मुझे जवाब दिया है ठीक है, और अगर आप सॉन्ग का नाम बता देंगे तो वेल इंक्लूडेड हो जाएगा, सॉन्ग का नाम आप मुझे बता दें चप्पल, अगर आपका जवाब ठीक होगा आपका सॉन्ग चल जाएगा तो आप समझ जाइएगा क्या जी आप जीत गए हैं। और मशहूर अहमद आप भी आपने बताया ओके जी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हम लोग यहाँ पर एक और सॉन्ग प्ले करेंगे जो कि वो भी मेरी पसंद पर ही है वो सॉन्ग, तो उस सॉन्ग

0: इस सॉन्ग को कर दिया हमने प्ले और सुनते साथ में एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को. बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग यार.
1: ड्रामा
0: तो स्टे भी बेस्ट है सॉन्ग तो.

0: तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सुन रहे थे इश्क है ड्रामे का ओएसटी सॉन्ग, और ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो मैंने सोचा यार क्यों मैं अकेले सुनूं, हमेशा आपको पता है कि कोई भी चीज मैं अकेले नहीं सुन रही थी, हमेशा आप लोगों के साथ सुन रही होती हूं। तो मैंने कहा आज भी क्यों मैं अकेले कोई सॉन्ग सुनूं, तो हमेशा की तरह आज मैंने आप लोगों के साथ सुना है। तो यहाँ पर टाइम हमारे पास होता है एक छोटे से न्यूज ब्रेक की तरफ जाने का। जैसे हम न्यूज ब्रेक पर भी जाना जरूरी है यार, पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हाल चाल है क्या नहीं है। जैसे आप अपना तो बता नहीं रहे होते तो दुनिया की तो खबर हमें नहीं चाहिए ना न्यूज सुन के। तो हम लोग अभी जाएंगे न्यूज की तरफ, लेकिन घबराना नहीं है, परेशाना नहीं है। और आपने क्या करना है कि आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब सब तक सोच लेना है, और जब मैं वापस आऊँ तो आपने मुझे जल्दी से कमेंट कर देना है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अपना पसंदीदा सॉन्ग बता दूंगी और सॉन्ग का नाम भी चला दूंगी, और जिससे मुझे कमेंट किया उनका सॉन्ग प्ले कर दूंगी, और मैं अपना जवाब बता दूंगी सवाल का कि भाई इसका ये जवाब था। अगर आप लोग नहीं देंगे टाइम पे जवाब तो कर रही हूँ मैं आपका इंतजार जी। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने सिर्फ इतना बताना है कि उस शेर का नाम आपने सिर्फ बताना है कि जिसको उल्टा लिखने पर एक परिंदे का नाम बनता हो। इतना आसान सवाल है, और स्कूल में हम इसको पहले यहाँ बना बना के पूछा करते थे, तो ये तो बहुत आसान है आप लोगों को।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN
4: शहीदन में छह पुलिस अहलकार एक कस्टम ऑफिसर बिन औरतुन एक बार भी शामिल। जख्मियुनि खे खणी वेंदड़ एम्बुलेंस ते बि फायरिंग बज रज़ाकार शहीद टे ज़ख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाइक़े में पहुची सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां चेक पोस्ट ते हमले जी मज़ामत। इंसानी जाननि जे नुक़सान ते ॾुख जो इज़हार। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखण जे वारे अज़म जो वर्जा। ईरान खे तजवीज़ुनि ते अमरीका खां बाज़ाबता तुरंत जवाब जो इंतज़ार। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़ी चयो आहे त अमरीकी सदर जो शुरूआती रदअमल डि॒ठो आहे, पर टियाकड़ी कंदड़नि ज़रिए जवाब न मिलियो आहे। ईरान टियाकड़ी कंदड़नि तरफ़ां हतमी मौक़िफ़ ॼाण जो मुंतज़िर आहे। इन ई बुनियाद ते असीं फ़ैसिलो कंदासीं। ट्रंप पारां अमरीका में मिडटर्म चूंडनि खां पोइ ॿीहर हमलनि जो इशारो कयो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदीअ बाबति ईरानी तजवीज़ूं रद्द करण जी तसदीक़ कंदे ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग हाराए रहियो आहे, आबने ऑरेंज में खोलण लाइ तयार थी वियो आहे। मां पाण मुआदो करण चाहियां थो, ईरानी डील क़बूल न आहे। ट्रंप ॿीहर आबने ऑरेंज खे ट्रंप स्ट्रीट जो नालो ॾेई छॾियो। तस्वीर समाजी वेबसाइट ते जारी कई वई आहे।

सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद खां कराची पहुची वियो। संदसि सदारत हेठि पीपल्स पार्टी जो इजलास जल्द थियण जो इम्कान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर सरफराज बुख्टी बि कराची पहुतल। इजलास में सियासी मामलनि समेत नवनि सूबनि जे मामलनि ते अहम फ़ैसलनि जो इम्कान। केटीएन न्यूज खानपुर महर जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल मुबैना तौर अगवा। अज़ीम सियाल जे कार पनवाकल भरसां सदूजा थाणे वटां मिली आहे। वारसनि जो चवण आहे त कार जे शीशे खे रतु लॻल आहे। हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार खे पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां क़तल करण जो इनकशाफ़। पुलिस पारां ब॒ मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा। पुलिस ज़रियनि मूजिब नरेश कुमार जे क़तल केस जे ॿिनि मुख्य जवाबदारनि खे टंडरोल अयार मां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ज़रियनि मूजिब मक़तूल खे कर्ज़ वापसि ॾियण जे बहाने घुराए क़तल कयो वियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में दरियान जे आलमी ॾिहाड़े ते सिंधूअ जे तहफ़ुज़ लाइ तक़रीबूं ऐं एहतजाज। सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंधु तो में सा मुंहिंजो जे उनवान सां ढोरो नारो, नवाब वली मोहम्मद जोई ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा। अॻवाणनि चयो त पंजाब गैर क़ानूनी तौर पाणी खणी रहियो आहे। सिंधूअ जो पाणी असांजो जियापो आहे, धाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कबो। सिंध जा आबादगार पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। बलोचिस्तान जे इलाइक़े ओस्ता मोहम्मद में हथियारबंदनि जी फायरिंग बजणा क़तल, हिकु ज़ख़्मी। बाबा कोट थाणे जे हद में नौरोज़ ख़ान उमराणी ऐं संदसि गनमैन नबी बख़्श खोसो क़तल। हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। पुलिस मूजिबि वाक़िए जो कारण मालूम न थी सघियो आहे।

0: बुढ़ी फोत ॼाणायल नौजवान के कतल करण जो इल्ज़ाम वारसन जो चवण आहे त परवेज के तशद्दुद करण बाद कतल करे लाश वाह में लोड़ियो वियो। शफाफ जांच करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
5: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: हेलो जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि हम सुन रहे थे यहाँ पर न्यूज ब्रेक, और न्यूज ब्रेक सुनना जरूरी है जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब हमारे पास टाइम कम होता है तभी हमारे बंदे बहुत सारे मौजूद होते हैं। आप लोगों को मैं बोलती हूँ, डायलॉग मुझे ज्वाइन कर लिया करें ताकि आप लोग पसंदीदा सॉन्ग से प्ले हो सके, लेकिन आप लोग तो वही समझते ही नहीं हैं। तो जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि जयपाल कहते हैं कि जी मैंने नाश्ता किया था, आपने नाश्ता किया, और साथ में वो हमें एक शायरी भेजते हुए कहते हैं, ये झूठ है कि मोहब्बत किसी को बर्बाद करती है, लोग खुद ही बर्बाद हो जाते हैं मोहब्बत हासिल करते करते। जी बिल्कुल ऐसा ही। और कहते हैं अगर आप भी कोई पोएट्री शेयर मतलब अशार करना चाहें तो ठीक है, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर आपको इरशाद करूंगी। और साथ में कहते हैं कि ये जो नजरों से तुम मेरे दिल को निटाल करते हो, जुल्म है साहिब मगर कमाल करते हो। ओके जी, और किसने आपके साथ जुल्म कर दिया भाई। और कहते हैं कि कराची का मौसम बहुत अच्छा है और बादल भी घूम रहे हैं, नाइस वेदर एंड सॉन्ग नो मेकअप बिलाल सईद प्लीज प्ले थैंक्स। ओके जी, आपने मेरा जवाब दिया था तो आपका सॉन्ग हम प्ले करते हैं, आपका जवाब बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर हम लोग सॉन्ग प्ले करते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि और हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं शयान अली, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आई लव यू विद द बेस्ट विशेस एंड टेक केयर। आपका शो बहुत मतलब आपका बड़ा शो खूबसूरत है, थैंक यू सो मच शयान अली। ऐसे मुझे ज्वाइन करते रहा करें, हर इतवार को रहती हूँ मैं और आपके साथ पूरे पूरे दो घंटे के लिए, तो आज भी ऐसे ही है और बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। उसके अलावा तालिब मरी समारोह शक कहते हैं कोट लाल मोहम्मद मरी के तालिब मेरी मरी फर्जंद कादरी मरे ओकी जी, और गोट लाल मोहम्मद मरी किताब मरी फर्जंद दो मैसेज की दफा। और कहते हैं सिस्टर सवाल जो जवाब आए एड़ो शेर। अच्छा जी, कहते हैं कि नहीं आपने मुझे जो है परिंदे का नाम तो चलो ठीक बताया है, लेकिन उसका जो आपने शेर का नाम बताया वो थोड़ा आपसे गलत हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप सॉन्ग कहते हैं तो शमन अली मिराली का हम सॉन्ग जरूर प्ले कर देते हैं। ओके जी, कोई बात नहीं। अब्दुल रशीद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट तो किया। और उसके अलावा अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सवाल का जवाब है मोरो और सॉन्ग मोरो। ओके, सॉन्ग थोड़ा अच्छा जी, लेकिन आपका जवाब थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है। और उसके अलावा जो है अब्दुल रजाक जो है जलोरी से खालिद लशारी हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे मेरे साथ ज्वाइन होते हैं हर संडे इतवार को। और साथ में इकबाल लशारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इकबाल लशारी हमें कहते हैं विलो सोनू खान लशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं, बाजी सना सवाल का जवाब है। ओके जी, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। और इकबाल लशारी, अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है तो आप मुझे काइंडली बता दें ताकि अगर टाइमली हम आपको सॉन्ग प्ले कर सके। और अब्दाल अली शेख कहते हैं कि सिस्टर सना सवाल कहड़ो आहे, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सना खान, कहें आयो तवा प्रोग्राम बेहतरीन हले रहो तमाचाणी सक्कर कहाँ फ्रॉम। अच्छा जी, ओके जी, और बहुत खुशी हुई अब्दुल अली, आपने मुझे कमेंट किया है, अगर आपने मुझे सवाल का जवाब भी दे दिया है, थोड़ा गलत है लेकिन आपके पसंद का हम सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे शमन अली मिराल की आवाज में आपको सॉन्ग सुनने को मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हम यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करते हैं नो मेकअप लाल सईद की आवाज में, ये सॉन्ग है और जवाब ठीक प्ले करते हैं, फरमाइश सॉन्ग है तो करते हैं प्ले, करते हैं इसको भी इंजॉय और बाकी करेंगे बाद में आपके सॉन्ग एंजॉय।
1: Now this one's dedicated to that one love in your life. Bohemia.
2: Bloodline music.
1: Bilal said.

तो वाओ बहुत खूबसूरत सॉन्ग हम लोग सुन रहे थे, नो मेकअप हाई हिल्स। तो जी अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फेमस सॉन्ग बहुत सारे जमा हो गए हैं, तो यहाँ पर अभी एक और हम सॉन्ग प्ले करने वाले हैं फैज अली की आवाज में। ये खूबसूरत सा सॉन्ग है जो आप लोग भी सुनेंगे और हम सब सुनेंगे मिलकर। तो फेमस सॉन्ग तो जी कर दिया ये सॉन्ग प्ले, और

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग मलिका सॉन्ग फैजल अली की आवाज में सॉन्ग कोई सा भी हम सुनते हैं का उर्दू वाला सॉन्ग सुनते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सॉन्ग सुनते हैं बहुत ही कोई लाजवाब सॉन्ग होते हैं मतलब अच्छा लगता है सुबह का आगाज लगता है अभी हुई है सुबह हमारी तो यकीन आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा मुझे तो इनके सॉन्ग पसंद है तो इसलिए हमने जो है किए थे और इसके अलावा जो है बहुत सारे और सॉन्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन अभी मैं चाहूंगी यार यहाँ पर कि अभी हम लोग अपने

0: इसके अलावा जो सॉन्ग के साथ साथ मुझे शायरी के लिए कहा गया था कि आप कोई ना कोई शायरी अर्ज करें, और अभी कहते हैं कि वो यार पेंडिंग में है, चलो जब आपका दिल करे या जब आपका टाइम हो तो आप जरूर सुनाइएगा। नहीं जरूर चौकी जी, मेरे पास टाइम होता है तो मैं जरूर सुनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पर हाँ बस एक कोर टाइम होता है छोटे छोटे कमर्शियल ब्रेक के तरफ जाने का। अभी हम जैसे ही ब्रेक पे जाएंगे वैसे ही वापस आ जाएंगे, तो वापस आके मैं आपको जरूर पोएट्री सुनाती हूँ, आपको अपनी तरफ से एक पोएट्री सुनाते हैं हम, और रहिएगा मेरे साथ एंगेज मच मेरे साथ होने का, और मजे मजे की सॉन्ग भी सुनेंगे। इसके बाद टाइम वैसे ही पता है आपको कि बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, सिर्फ आधा घंटा बचा है रिमेनिंग, तो बाकी जो हैं बातें बहुत सारी हो जाती हैं रहती हैं, और बातें खत्म नहीं होती, टाइम खत्म हो जाता है, ऐसे ही है कि काम खत्म नहीं होता, इंसान खत्म हो जाता है, तो ऐसे ही बिल्कुल जी। तो मैं आकर जो है अपना सवाल का जवाब आपको खुद बता दूंगी, और सिंगल सॉन्ग मैंने आपके प्ले कर दिए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे उसका क्या जवाब है, लेकिन मैं आपको जवाब आपके अभी जरूर बता देती हूँ। यहाँ पर टाइम होता है वहां से छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके बताऊंगी अपने सवाल का जवाब। जब तक रखना है अपना बहुत सारा ख्याल रहेगा मेरे साथ, कहीं जाने की जरूरत नहीं क्योंकि छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by अगर खूबसूरती चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं
3: GAFM
2: 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजाते बस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजाते बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879-0312-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
6: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बेडी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग सॉन्ग, और एक और सॉन्ग हमारे पास मौजूद है जो कि फरमाइश पर है. तो जी यहाँ पर सॉन्ग एक और सॉन्ग प्ले करते हैं, इसके बाद हम जाएंगे छोटे से शॉक कमेंट ब्रेक की तरफ. तो इस सॉन्ग को सुनते सुनते हम चले जाएंगे, वापस भी आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. तो यहाँ पर कर दिया सॉन्ग को मैंने प्ले, सॉन्ग को भी करते हैं साथ में एंजॉय.

0: Class 35 B. It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
2: सुनते रहो GAFM 90.4.

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
1: और यहाँ पर एक सॉन्ग हमारे पास बताया लास्ट में, जो कि शमन अली मुरली की आवाज में हमें एक फरमाइशी सॉन्ग था जो हम प्ले करेंगे लास्ट में चलते जाते। और इसके अलावा मैं बताऊंगी जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है और आप लोग मेरे साथ मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं हबीबुल्ला ते वो सॉन्ग बदराई जो तुम, हम तुम्हारी राह देखेंगे। अच्छा अच्छा, हम तुम्हारी राह देखेंगे, हम तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, लेकिन आपको बहुत देर हो गई है हमारे शो में आते आते। तो जनाब आप कहाँ थे, आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था ताकि आप हमारे शो में आते तो हम जल्दी हम आपको सॉन्ग प्ले करते। खैर, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, लेकिन आपको भी कसम है कि नेक्स्ट संडे आपने क्या करना है, मुझे ज्वाइन करना है, आप बिल्कुल टाइम में ज्वाइन करना है। अगर आप लोग मुझे देर से ज्वाइन करते हैं तो जी यहाँ पर आपको पता है कि वो हमारा टाइम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम जरूर इंशाल्लाह भी प्ले कर लेंगे। तो यहाँ पर चले एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, उसके बाद इनका सॉन्ग भी हम आज ही प्ले करते हैं, कोई बात नहीं। आपने मुझे

0: तो जी यहाँ पर हम लोग अभी एक और सॉन्ग प्ले करेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा ये बहुत अफजा सॉन्ग हम सुन रहे थे शमन अरीम लाली की आवाज में, और आप लोगों ने भी मेरे साथ ये सॉन्ग एंजॉय किया होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, कहते हैं अब्दुल अली ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सिस्टर सना, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपका कि आपने मुझे ज्वाइन किया। ऐसे ही आप सारे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगले इतवार को मेरे साथ टाइम मुझे ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास अल्लाह हाफिज करने का। तो यहाँ पर करते हैं जी अल्लाह हाफिज, एक सॉन्ग को लास्ट में प्ले करते जाएंगे, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, जैसा कि हमें फरमाइश आई थी अभी हबीबुल्लाह की तरफ से, और लाड़काना साहब मुझे मैसेज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने ज्वाइन किया है। अभी बोला ऐसे आपने नेक्स्ट संडे आपने क्या करना, मुझे टाइम ज्वाइन करना है और मेरे सवाल को सुनना है, मेरे सवाल का जवाब भी देना है, और आपने साथ में मुझे ज्वाइन करने के साथ साथ मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी बता देना है, जैसे आज बताया था, तो अगर मैं वो ठीक होगा तो मैं प्ले कर दूंगी, वैसे ही मैं आपको प्ले करूंगी, आप मेरे जो है न्यू लिसनर है तो उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैं आपको सॉन्ग प्ले करूंगी, आप मुझे जरूर अपने पसंद का सॉन्ग का नाम बताना है। अगले इतवार करूंगी मैं आपका इंतजार, और मिलते हैं अभी अगले सेगमेंट में अगले इतवार को। जब तक रखना है आप सबने अपना बहुत सारा ख्याल, जब तक ये अल्लाह हाफिज है, और इस सॉन्ग को कर दिया है मैंने प्ले, इस सॉन्ग को करते हैं साथ में एंजॉय, अल्लाह हाफिज।
1: तीन बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसमें झटका सा महसूस होता है।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: KTN News खानपुर मर जो रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा धाड़ेलन पारा बाजियाबी ला 1 करोड़ रुपया भंग तलब. अजीम सियाल के वारसन जो चवण है तो पन्ना अकल में हथ आयल गाड़ी के शीशन के रत लगल है. धाड़ेलन फोन करे 1 करोड़ रुपया भंग घुरो है. घोटकी में कलम धड़न पारा कौमी शाह धरणो पनो अकल में बेहतजाज किया हो. कलम धड़न जो चवण है तो बदमनी एतरी तो वधी वही है जो हाँ आम मानन का पोई कलम धड़ी भी अगवा थी रहा है. आई जी सिंध वाके जो नोटिस वठंदे डीआईजी सखर एसएसपी घोटकी का तफसील तलब करे वरता.

0: केपीए के इलाके डेरा इस्माइल खान में चेक पोस्ट भरसा आपघाती हमले में शहीदन जो अंग 13 थी वो 35 का वधिक जख्मी। आपघाती बमबार बारूद से भरल गाड़ी के दराजान में अमन मेला चौक चेक पोस्ट से टकराया। शहीदन में 6 पुलिस अहलकार, 1 कस्टम ऑफिसर, बेन औरतों ने 1 बार भी शामिल। जख्मी के खड़ी वेंदड़ एम्बुलेंस से भी फायरिंग की गई। 2 रजाकार शहीद, 3 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में पहुंची सर्च ऑपरेशन शुरू कर छोड़ो। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी बेन पारा चेक पोस्ट से हमले की मजम्मत। इंसानी जानन के नुकसान से दुख जो इजहार। दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी रखने वाले अजम के वर्जा। ईरान के तजीजन से अमरीका का बाजाबता तौर जवाब जो इंतजार। ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराची है तो अमरीकी सदर जो शुरुआती रद्द अमल डिठो है पर ट्रियाकड़ी कंदड़न जरिए जवाब न मिलो है। ईरान ट्रियाकड़ी कंदड़न तरफा हतमी मौकफ जान जो मुंतजर है। उन बुनियाद से असि फैसलो कंदी। ट्रंप पारा अमरीका में मिड टर्म चूंडन का बीर हमलों को इशारो दिनो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी बाबत ईरानी तजवीजों रद्द करण की तस्दीक कर छी। ट्रंप है तो ईरान जंग हारा रो है। आबनाय रमसबे खोलने ला तैयार थी वो है। मां पान मुआदो कर चाहें तो ईरानी डील कबूल ना है। ट्रंप बीहर आबनाय रमस के ट्रंप स्ट्रीट जो नालो दई छो। तस्वीर समाजी वेबसाइट से जारी कर छी। सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद का कराची पहुंची वो। संदस सदारत हेठ पीपल्स पार्टी जो इजलास जल्द थियण जो इम्कान। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलोचिस्तान जो वडो वजीर सरफराज भुगटी भी कराची पहुंतल। इजलास में सियासी मामलन समेत नवन सूबन के मामलन ते अहम फैसले जो इम्कान। हैदराबाद में व्यापारी नरेश कुमार के पैसों की डेती लेती तां कतल करण जो इनकशाफ। पुलिस पारा ब मुख जवाबदार गिरफ्तार करण की दावा। पुलिस जरिए मूजिब नरेश कुमार के कतल केस के बिन मुख जवाबदार के टंडरोल अयार में गिरफ्तार किया। जरिए मूजिब मकतूल के कर्ज वापस दियण के बहाने घुराए कतल किया। सिंध के मुख्तलिफ शहर में दरियान के आलमी दिहाड़े ते सिंधु के तहफुज लाए तकरीबू एहतजाज। एसयूपी पारा सिंधु तो में सा मुंजो जे उनवान सा ढोरो नारो नवाब अली मोहम्मद जोई ए बियन शहर में मुजाहरा। अगवान चयो त पंजाब गैर कानूनी तौर पानी खणी रहयो आए। सिंधु जो पानी असो जियापो आए। धाड़ो कें भी सूरत में कबूल न कबो। सिंध जा आबादगार पानी लाए परेशान आएं। दड़ो में गुजरल डी हथियारबंदन की फायरिंग में कतल थियल 15 वर की नींगरी जो लाश रखी धरणो। वारसन ए सवें शहर मकतूल नींगरी मुर्क मेमण जो लाश पिंजारी पुल चौक ते रखी धरणो हयो। मुजाहरीन जो बिना देर नींगरी के कतल में मुलविस जवाबदार के गिरफ्तार करने जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीनायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جی بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن جی مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
3: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331-252-5786
5: जी हा 2315-2575-786
9: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़

के पहले दिन या जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होंगी जनाब। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें इसलिए होने वाली है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करने वाले हैं। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में किस तरह से जो है वो जान ला देगा, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा और किस तरह से आपकी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए लॉक भी कर देगा, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें आप लोगों को मालूम पड़ेंगी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि भाई हमें क्या चीज ट्राई करनी चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर साबित होंगी और कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए सही साबित हो सकती है। ये तमाम चीजें अगर आपको कोई और नहीं बताता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे और बताएंगे भी ऐसे कि आप समझ जाएं कि भाई आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें आपने अपनी स्किन के लिए जरूरी जरूरी करनी होती है। ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्धराम मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्धराम के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और खूबसूरती की जरा बातें बताएंगे कि भाई किस तरह से आप खूबसूरत रह सकते हैं और किस तरह से खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने पास भी रख सकते हैं। और चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, तो परेशान क्यों होते हैं भाई जान, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा गया और हर तरह से आपकी जो है ना स्किन को प्रोटेक्ट किया गया है, हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बनाने के चक्करों में है ना। तो आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम रहना चाहते हैं, तो क्या तरीकेकार होने वाले हैं वो सब कुछ बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो सर आपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत कैसे है आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले हैं। तो इन्नी शाली बातों के लिए जरा रेडी शेडी हो जाइए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्धर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाते हैं और यहाँ पर ऐसे करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारे से कलाम जो कि हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होने वाला है जी प्ले, और कलाम सुनते ही कलाम के जैसे ही उस पार आप लोगों से मुलाकात होगी तो आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाएं।

छूट दिए जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म लिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: जी आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जनाब, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, हमारे एरिया में तो मिलते ही नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आप लोग जरा अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी मिल रहे तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे और कहां से जाकर आप जो है ना परचेज कर सकते हैं, किस तरह से आप अवेलेबल भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, सब बातें की जाएंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाए कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और नहीं भी पता है तब भी बनते जाइए, क्यों कोई मसला नहीं। आपको टॉपिक का जवाब आ रहा हो या नहीं आ रहा, लेकिन ये बात है कि भाई तो कई मान लिया करें, टॉपिक को जरूर से फॉलो कर लिया करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM88.8 हमारा पेज ही जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि मर्द को भी खूबसूरत बना देगा वो डर है ना, तो औरत हो या मर्द दोनों ही खूबसूरत हो जाएंगे। आप मुझे बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं और जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से नंबर्स को जरा नोट कर लेना है जो नंबर में अभी आप लोगों को बताने लगी, नंबर को जल्दी से ना नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं और आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मिलना चाहिए, तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0332783484309 ही नंबर आहिनि जेके डायल करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। भले तव्हां दुनिया जे कहिड़े बि कोने में मौजूद आहियो, किथां बि तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो था, हर जॻह ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। बस इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव ऐं असां इस्तेमाल करण चाहियूं था, बराए महिरबानी असांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वञो त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। छो त वैसे बि तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, ही बाबा पोतल प्रोडक्ट आहे, पोतल सां मुराद इहा त ही सिर्फ़ न सिर्फ़ तव्हांखे पूरे पाकिस्तान में मिलंदो, बाक़ी ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली सघे थी, छो त ही हिकु इंटरनेशनल प्रोडक्ट आहे ऐं तव्हांजे लाइ इस्तेमाल करण जा होर सारा हिन जे लाइ वजूहात मौजूद आहे, त तव्हां छो इस्तेमाल कंदा, छो त बाबा अहिड़ो प्रोडक्ट हाणे मार्केट में अची वियो आहे, तव्हांजे लाइ बि मार्केट में अवेलेबल आहे। जेके माण्हू इहो सोचनि था त बाबा असां महांगा महांगा प्रोडक्ट अफोर्ड नथा करे सघूं, असांजी जेब असांखे इजाज़त कोन ॾींदी आहे, त तव्हां हाणे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ करे सघो था, जेको तव्हां इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे रियलाइज़ थींदो त बाबा वाकई ही अहिड़ा प्रोडक्ट आहे जेके असां हमेशा खां इस्तेमाल करण चाहियूं पिया, ऐं असांखे ख़बर नहीं, कोई गाइड न पियो करे या असांखे कोई ॿुधाए कोन पियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि मार्केट में अवेलेबल आहे। चलो हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो, ऐं तव्हां वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो परचेस कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे यूज़ करण स्टार्ट कयो, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। बिल्कुल, सुनाओ, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, मर्द को भी खूबसूरत बनाता है, हाँ जी दोनों को खूबसूरत बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नजीर कोसो भाई ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बलूचिस्तान से आप हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो, क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर तमाशाई बढ़ा लेते हैं, हम दर्द नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फरवाह हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, आपकी तबीयत कैसी है, होप यू आर फाइन एंड वेरी नाइस। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी हैं, ठीक ठाक। और बरकत रमादानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं, जी आप भी हमें बलोचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है, मैंने तुमसे मिले बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें छुए बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें देखे बगैर तुमसे मोहब्बत की है। क्या बात है भाई जान, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। फरवा गुल हमें सुन रही है, आप ही अर्ज किया है, हम तो आज भी आपको याद करते हैं, तुम भूल गए, अच्छा तुम भूल भी गए, ये कमाल है, हाँ जी वाकई बहुत बड़ा कमाल है। और कहती रिक्वेस्ट है जोड़ा आसमानंद ठंडायन बाय मुमताज मौलाई डेडिकेटेड स्पेशली आप और तमाम लिसनर्स के नाम, चले मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और दिया हमारे साथ हैं, दिया क्या कहती है, दिया ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं आप, उम्मीद के अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी, जी जी। और कहती हैं कि हम भी आ गए आपके शो में, प्लीज प्ले निगत नखरा छुनवा गया डेडिकेटेड स्पेशली रिमशा उरूसा हिरा एंड डेविल, ओके ओके। अच्छा फहीम भाई हमें सुन रहे, कहते कि नजर जी नजर के नजर न लगे, कोई सुठो भी हिन कदर न लगे, तोखे डिठो आहे हिन नजर सां या हुन नजर हिन ही हुन में थोड़ो मां कंफ्यूज थी वेंदी आहियां। कहते कि जे नजर सां तोखे नजर न लगे, अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अलैहि सलाम। कहते अदा छाल आहिनि, खुश आयो, सफ़ा चाक स्लेट कल मस्ती डबी हाओ, असां भी अची वियासीं प्रोग्राम ते लाजवाब आहे हमेशा जीअं अवां वांगे, थैंक यू सो मच प्यारा सोहणा भाउ। पोस्ट के लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब्दुल गुलाम कैसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, हैदराबाद से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू। मुख्तियार अली लाशारी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और फरवा कहती हैं लाइक और शेयर कर दिया आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। फहीम भाई आपने भी कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ हैं, हली पोटो स्टाफ खान तमाम से प्रोग्राम बुध पाया, थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद राशिद अमान हमारे साथ ही, सिस्टर सिद्रा मुस्कान खुश रहे, आमीन, आपका प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें होती हैं, बस इस काबिल हमें समझ लेते हैं, वरना ना चीज इस काबिल कहा। ऐसे नारबाणी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना सलाम अदर, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसियां, वेलकम कहते हैं दिल से आपको, गुर्दों से वेलकम कहते हैं। हजार भाई भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई। और ऐसे ही आप सब लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है, जरा हम जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे ना ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किस किसने किया, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर नहीं, ये भी मुझे बताइए, और टॉपिक को फॉलो करते जाइए।
1: सिंध के माथे का झूमर,
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो, पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग, इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप, वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु, वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो, आज ही 1114752644 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें, शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
5: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
10: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

ओके जी, वापस आ चुके हैं द्वारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको जो खूबसूरती मिलने वाली है उसके बारे में जरा बातें की जाएंगी। और इसी के साथ साथ आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कीजिए 8821 पर और फेसबुक पर। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। ऐसे ये होता है कि भाई हम बहुत सारे लोगों को बता पाते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर आप मर्द हजरात हैं, अगर आप खवातीन हैं, तो हर कोई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकता है, हुई ना मजे की बात। तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि भाई आप लोगों को आज पता चलेंगी या फिर पहले से पता है लेकिन आप जरा बुढ़े तरह में आयो तो असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी चाहूँ या फिर न वठी चाहूँ। बाबा तहां बिना सोचे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण स्टार्ट कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जो इस्तेमाल आए ना वो तुम्हारे खूबसूरती जो ढो फायदेमंद साबित थी। तो दुनिया में बेशक बहुत ज्यादा प्रोडक्ट देखे होंगे जो कि आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको वक्ती तौर पर खूबसूरत तो बना देते लेकिन जब आप उन प्रोडक्ट्स का यूज करना छोड़ देते हैं तब आपकी खूबसूरती जो है वो कहीं गायब हो जाती है। आपके चेहरे पर जो निखार आ चुका होता है वो कहीं गायब हो चुका होता है और आपकी खूबसूरती जो है ना वो मानन पड़ जाती है। बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाती है जो कि भाई आप नहीं चाहते हैं कि भाई ये होनी चाहिए। तो अगर आप भी इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं और कोई अच्छा सा कोई सेफ सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी स्किन के लिए ही है जनाब। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस वजह से नहीं इस्तेमाल करें कि भाई हमारी स्किन खराब हो जाती है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए और सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन बात तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये मेडिकेटेड फार्मूला है। मेडिकेटेड फार्मूला है तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पर आकर कि भाई हर स्किन वाला इंसान इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई तैयार की गई है उन डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो कि भाई आपकी स्किन के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तो ना बिल्कुल वही डॉक्टर्स उन्होंने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। और इसका फार्मूला जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा फार्मूला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करते हैं ना तो ये है तो बेसिकली एक नाइट क्रीम लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं ऐसे वाले जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। और इसके अंदर जो है विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन है और जनाब अल्फा आर्बुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। नाम सुनकर ही आपको एहसास होता होगा कि भाई वाकई ये तो कोई महंगा सा प्रोडक्ट लग रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को ये इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है, आप सारे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगी ऐसी शानदार सी खूबसूरती जिसकी आप हमेशा से जो है ना वो कल्पना करते थे, हमेशा से आप चाहते थे कि भाई हमें भी काश ऐसा हुसन मिलते लेकिन कैसे मिलता, तो वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के यूज के फौरन बाद ही आपको मिल जाएगा क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स जो है ना ये आपकी खूबसूरती में इस तरह से इजाफा लाने वाले हैं जो कि आपने देखा होगा नोटिस करा होगा जो खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल्स कराती है ना उनके फेशियल्स के अंदर ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एड किए जाते हैं तभी उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर भी विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ऐड किए गए हैं और इसी के साथ साथ ये मुनासिब कीमतों में भी आपको मिल रहे हैं और आपका टाइम भी इतना ज्यादा वेस्ट नहीं होगा कि भाई आप क्या घंटों बैठकर पार्लर जो है वो फेशियल कराते रहे। बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे आपको मिलेगी ऐसी शानदार सी खूबसूरती जिसके आप सपने देखते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं हर कोई कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल हर एक स्किन के ऊपर किया जा सकता है, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज
यूज किया जा सकता है. तो कीजिए भाई, किसने मना किया. खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है जनाब, लेकिन खूबसूरती के साथ अपनी जल्द की मुनासिब केयर जो है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अपनी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए. ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है और आपकी जल्द को नरम, मुलायम और मॉइस्चराइज भी रखेगी. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज जो है ना आपको खूबसूरत बनाने के लिए किया गया है और आपका टाइम बचाने के लिए किया गया है. आपके पैसों में जरा जो है ना वो ऐसा नहीं कि भाई आप जाएं धड़ाधम बहुत ज्यादा महंगे महंगे आप ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, डॉक्टर्स को दिखा रहे होते हैं. भाई ये फार्मूला ऐसा है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो ऐसे आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं. एक्नी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं. एक्नी मार्क्स आ चुके हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. रंगत का इशू है उसके लिए भी कर सकते हैं. क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी की रूटीन में बस आपने शामिल कर लेना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए इतना खूबसूरत सा एहसास होगा कि आप लगाने के फौरन बाद ही कहेंगे आए हाय चस करा दी भाईजान. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है और मर्द हजरात ही खवातीन हर कोई यूज कर सकता है. बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी. ये एक छोटा सा टेलर था और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है. छोटा सा टेलर था और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी

मॉइस्चराइज रखने के लिए होती हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए होती हैं। तो हर दिन को अगर आप बेहतर, रिफ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश बनाना चाहते हैं और आपके चेहरे पर ये जो थकन नजर आती है, ये गर्दो गुबार जमा हो चुका है और काफी ऑयल आपको महसूस होता है कि भाई हमारी स्किन बड़ी ऑयली है, तो हम क्या करें? क्योंकि ऑयल को ज्यादा जो है ना, आप बहुत सारे प्रोडक्ट लगा चुके होते हैं लेकिन ये ऑयल आपके चेहरे से जो है ना वो ज्यादा ही नहीं है। और ऑयली जिन लोगों की स्किन होती है, जाहिर सी बात है उनके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम भी आ चुका होता है। तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा तरोताजा रखने के लिए, अपनी स्किन को हमेशा कंट्रोल में रखने के लिए आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं। तो डी स्किन का फेस वॉश बिल्कुल जी बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट साबित होने वाला है। आप सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप खवातीन हैं। तो इस्तेमाल करती रहिए और जरा खूबसूरती का ख्याल रखते रहिए, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो डी स्किन का जो फेस वॉश है या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप अपने इजीली किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर पर्स कर लीजिए नहीं मिल रहे हैं तो बिल्कुल जी आप डायल करेंगे नंबर्स, क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ नंबर्स को डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, वो अवेलेबल हो सकता है और आप वहां से जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 50 25 970 एंड यू नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73 84 309 ये नंबर तुम डायल करना पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइंदा एंड उतना वहीं इजीली परचेज करेंगे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश तुम्हारी खूबसूरती में आनी दो बाबा चार चंड। सो तुम भी अगर खूबसूरत थियन चाहो था, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहो था, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी करे दिसो। ओके जी, उनका अलावा तमाम मैसेजेस आए, तमाम फीडबैक्स आए जैसे तरफ बिल्कुल ऐसा अचूं था, लेकिन माँ जमा का सवाल पूछो है उन्हें जो जवाब तुम मुख्य बुधाईंदा हलो। सवाल यो है वो केड़ो डर आहे जेको औरत के मर्द के खूबसूरत बनाए छड़ींदो आहे। हाँ जी, वो कौन सा डर है जो औरत हो या मर्द हो दोनों को खूबसूरत बना देगा? अब आप मुझे बताइए वो कौन सा डर है आपकी नजर में। और इसी के साथ साथ मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे से गाने भी मौजूद है, तो आइए जरा गाना सुनते हैं। और आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, पोस्ट को लगे आज जरा लाइक और शेयर कीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

Angie. ॿियो हाल अहिवाल डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो या अञा ताईं कोन कयो अथव? बाबा वञो जल्दी करे अचो।

0: क्या तेरा
1: अच्छा भाई मैंने अभी देखा तो आपके जो पहले वाले मतलब पहले पहले वाले कमेंट्स है ना वो तकरीबन ही ऊपर चले गए हैं तो मैं जरा देखती हूँ जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं और हिदायतुल्लाह अहमद

ये हमारे साथ कहते हैं कि जवाब सोचिंग के बाद ये जवाब आया कि खुदा से ओके ओके ओके. और हजार भाई कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है. योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस. वहीं भाई आपने लिंक शेयर कर दी है ओके मैं आपका गाना लगाती हूँ बस थोड़ा सा सब्र किया करे. और निदड़ी हमारे साथ कहती है मैंने अभी एक वीडियो देखा उसमें था AI कुछ सालों के बाद इंसान मार देगा. अब ये क्या सच है लग तो रहा है. अच्छा फहीम भाई कहते हैं दादा क्या सर खाले जुड़े जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकता है. बिल्कुल जी चाचा को तो जरूर यूज करवाइए भाई. और अनवर भाई हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तबीयत सही आहे न मुर्कन सा सजायल ये जिंदगी जो पंध खुशिन जो गुलाब पियो मुर्के सजो हंद दुआ आहे तो हमेशा यही रहन आबाद कहीं खे भी न अचे कोई दिल ते बंद. सही बाबा सही बाबा. हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिर्स आज कोई अपनी पसंद का चली AI का सही सही सही मैं लगाती हूँ. भाई हजार भाई AI के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं. सही है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे. और तबीयत मेरी काफी बेहतर है आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक. निदरी कहती हैं कि पोस्ट पर चैट नहीं करो आप लोग हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं. ये बिल्कुल यही रीजन है जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं. और चाचा खाले तुम्हारे साथ कहते हैं बंडल ऑफ थैंक्स बेटा. अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं बताएं तो. इंतजार अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओके तमा के भी चौथा भली करी आया. चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं. आप डी स्किन का फेस वॉश यूज कर सकते हैं डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा देंगे और आपके चेहरे पर चार चांद लगा देंगे. तव्हांजे चेहरे जो ऑयल भी कंट्रोल थी वेंदो ऐं तव्हांजी खूबसूरती में भी इज़ाफ़ो अची वेंदो.

पहिरियां गुल छॾियां पेर पो रखजां पंहिंजी गाॾी मां पेर पो रखजां हलाए अच्छा वफ़ा शहज़ाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीबाबाद मोरी खां तव्हां असांजो प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मोहबतूं प्यारे सोने भाजू और इंतज़ार भाके थी टॉपिक पर्दा हया और शर्म ओके ओके जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहते नाइस यो मैम आर जे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी असां नानाणनि जे घोट रिटायर शिकारपुर वारा माण्हू बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कनि पिया ऐं शिकारपुर में बि हर जॻह ते टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे मां पुछा कराई बिल्कुल मूंखे इहा ई ख़बर पई त बाबा टी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफ़ा ज़ोरो शोरो से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वाले लोग हमें सुन रहे हैं टी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं।

नखरा कयो तव्हांखे बि फुल मोकल आहे पर पहिरियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो ठीकु आहे पोइ तव्हांखे नखरा बि ठहंदा जी अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आबासी आपने हमें ज्वाइन किया है जबरदस्त कंपेयरिंग बहुत शुक्रिया थैंक यू खुश रहें आप भी और जी अनवर भाई हमारे साथ हैं

अच्छा अनवर भाई लिखते हैं कि उस्ताद शागिर्द खां पुछो तो बुधाए शादी ऐं जंग में केड़ो फर्क आहे। शागिर्द एकदम जवाब दिनो, उस्ताद महाजरम जंग में दुश्मन सां समझौतो करण जा कुछ मौका मिलंदा आहिनि पर शादीअ में को बि समझौतो नथो हले, उते सिर्फ गैर मशरूत शिकस्त तस्लीम करणी पवंदी आहे। केॾा त सतायल आहियो अलाह तव्हां सभु। जी जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, निगत नाज आ चुकी है, एंजॉय कीजिए निगत नाज को। और मुगल उमरानी भाइयों में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, स्टिकर सामने शेयर कर दिए हैं। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम, अदी सदरा बिल्कुल ठीक ठाक आई तमाम चाहिए, अल्लाह पाक तमाम के खुश रखे, हमेशा मुस्कुराइंदे रहो, माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन लाजवाब। कम्पेयरिंग गोठ आगा खान जतोई लाड़काने खां मीर मुमताज अली जतोई और एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सर जतोई, तमाम भाउन जो मोहब्बतूं प्रोग्राम के पसंद कयो पिया। आई जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो बाबा जी, स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम खूबसूरती आए। तमाम मर्द हजरा तमाम खवातीन हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था आई फायदो हासिल करे सको था, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई सुना सुना थी वन्यो।

0: अच्छा अली रजा लगारी भाई हमारे साथ है गोठ जामखान लगारी से। अली रजा लगारी भाई सिस्टर सिद्रा वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, कहती हूँ आपका शो तमाम नाई से सॉन्ग हाले। अच्छा चलें ठीक है ठीक है, ये गाना आपको सुनाएंगे और कहते हैं प्लीज प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजे गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खोखर, खालिक लाशारे। सिस्टर हमारे गांव में ब्यूटी क्रीम नहीं मिलती है, आप बोल रही हैं सिस्टर। अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ, तो जो नंबर आपको बताया ना बिल्कुल उस नंबर के ऊपर आप राबता करके अपने गांव में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से नंबर के ऊपर राबता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइएगा और नाम जरूर उन्हें बताइएगा कि आप कौन सी क्रीम अवेलेबल कराना चाहते हैं। तलाब भेज दीजिए, आपका गाना भी लगा देंगे। नहीं, अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए, नहीं ऊपर चले गए। जी फहीम आपका जवाब मैंने देख लिया था और शायद पहला जवाब आप ही का था। रमेश ठाकुर हमें सुन रहे फ्रॉम सुल्तानाबाद। ओके रमेश भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच के साथ। चलिए जी यहाँ पर आप जरा हमारी पोस्ट पर बनी रहिए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जी हम जरा न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले, वापसी जल्दी आप लोगों के पास।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: लन फोन करे एक करोड़ रुपया भंग करियो आए। घरु वजीर ज़ियाल अंजार आईजी सिंध साहब इन जी अखबार जो नोटिस वरतो आए। आईजी सखर डीआईजी सखर का रिपोर्ट तलब, अजीम सियाल के बाजियाबी यकीन बनाने जो हुक्म। केटीएन न्यूज खानपुर मार के रिपोर्टर अजीम सियाल के बाजियाबी लाए कलम धनी सरापा एहतजाज, सहाफी अजीम सियाल के बाजियाब कराने जो मुतालबो। घोटकी में कलम धड़न पारा कौमी शाहरा से धरणो, पन्नो अकिल तंगवाणी, ठारू शाह, मुरीद शाह, डोकरी, मीरपुर साखरो, अठ अठ मोरी, बेन शहर में बेहतजाज।

सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में दरियाहनि जे आलमी ॾिहाड़े ते सिंधूअ जे तहफ़ुज़ लाइ तक़रीबूं ऐं एहतजाज। सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंधू तो में सावा मुंझो जे उनवान सां ठुल, बाडर, कोटड़ी, ढोरोनारो, सकरंड, सेवण, नवाब अली मोहम्मद जोई ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा। अॻवाननि चयो त सिंधू दरिया कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो।

दड़ो में गुज़िरियल रात हथियारबंदनि जी फायरिंग में क़तल थियल 15 वारनि जी नींगरीअ जो लाश रखी धरणो वारसन ऐं सवें शहरनि मक़तूल नींगरी मुर्क मेमण जो लाश रखी पिंजारी पुल चौक ते धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरनि जो बिना देर नींगरीअ जे क़तल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
0: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
1: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रत अचण सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287 सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125257 86।
1: जी हा, 231-25-25-786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अंदर भी अपनानी होती है और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना होता है, तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए डी स्किन फेस वॉश से। उसके बाद चेहरे को ना सुखा लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी। आपने मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए और लगाने के बाद जो है ना आपको इतना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। दो रातें जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई इतने अच्छे कमाल के हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। आपकी रंगत में इजाफा होगा, आपके चेहरे पर जो ये खतरनाक से असरात होते हैं ना, जैसे कि आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम है, एक्नी के निशानात हैं, या फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझा सी चुकी है, तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके चेहरे पर एक निखार होगा, एक ग्लो होगा, एक खूबसूरती होगी जो कि आप वाज़े देख सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है और साथ ही साथ अगर आप अपने भी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25-970 आई बी ओ नंबर आहे 03-27-34 नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया 03-27-38-4309 बुड़ी 300 है 73-84-309 ही नंबर तुम्हें डायल करना पांजे करीबी जनरल स्टोर से। नंबर डायल करने का फौरन बाद ही तुम्हें करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करायो विंदो। तो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो, पांजे खूबसूरती जो ख्याल रखो असा के बुधायो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कई कोन कई न कई आ छो न कई जल्दी कयो बाबा। असाजी पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो आई मुखे बुधायो किथा किथा था असा के ज्वाइन कयो आ टॉपिक मो हवा का पुछो आ मुखे बुधायो वो केड़ो डर आ जेको औरत के खूबसूरत बनाए छींदो आहे।

अच्छा हिकड़ी गाल याद अची वई पर छॾे साली कोन थी ॿुधायांव. अच्छा अगरि तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो था त मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो. यहां पर पैनल की जाने बातें तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी, बहुत ज्यादा वाले तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं. और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है वरियाम अली जतोई.

डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वठी चो हाणे तू देर न कर जल्दी वञ बाबा जल्दी वञ डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आ और ताले मरी समारोह भाई में सुन रहे हैं ताले मरी भाई तांचो मोहब्बत हुआ ता प्रोग्राम बुधो पया आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ है बतूल बिल्कुल आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान आपको वेलकम कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया कहती अस्सलाम वालेकुम सिद्रा आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं आपकी आवाज कोयल की जैसी है कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था मुझे मिला नहीं था तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे ठीक है बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं फिर मुझे मनाना नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना सुन लिया अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी वोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी खां कुरबान अली खास के लिए अली रजा लगारी तांसगर मौजूद है थैंक यू

पर मां तव्हां खे चवंदा बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अच ऐं डी स्किन जो फेस वॉश बि वठी अच। अच्छा फहीम खे वरी बि साॻी कार चवाए थो अदा सिंधी में हिकु हिकु अंग करे ॿुधाए मां बहिराड़ी जो अण पढ़ियल माण्हू आहियां सफ़ा सादो नज़र नथो अचे छा नज़र अञा त कोन आयो बीहो बीहो ब्रेक खां पोइ मोटी चवां थी पोइ तव्हांखे हिकु हिकु करे मां नंबर ॿुधायां थी ठीकु आहे तव्हां नोट करे वठिजो ऐं पोइ तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश ऐं डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइजो ठीकु आहे। सो हाणे तव्हां हिते वेहो मां हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठां थी पोइ जल्दी मोटी अचां थी तव्हां काॾे न वञिजो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
1: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

शो खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

जी क्या बात है, वापस आ चुके हैं जी दोबारा से हमारे लास्ट और सैडी लिंक में. आप कहते हैं ना सिद्रा के प्रोग्राम का जो लास्ट लिंक होता है वो सैडी लिंक होता है. वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जितनी भी आपके सैडी वाले गाने होते हैं उठा के भी लास्ट लिंक में फेंक देती हूँ. मैं कहती हूँ ये सारे तो हम लास्ट लिंक में ही सुनेंगे. तो बिल्कुल आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही ही नहीं बताएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जरूरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऊट पटांग वाले प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा के देख लिए हैं, लेकिन अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए 2-in-1 फार्मूला भी है. यानी कि आप लोगों के लिए नाइट क्रीम तो हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आप लोगों को फेशियल वाला रिजल्ट मिलता है. फेशियल ऐसा वैसा बहुत महंगा वाला फेशियल, बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है. ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दोनों जो चीजें ना बहुत प्रीमियम है, बहुत खास है, और ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है. अगर हम बात करें यहाँ पर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स की, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट है जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स को एड किया गया है. तो इसी वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटी है ना वो इतनी बेस्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा. तो मर्द हजरात हैं, खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. एक और मजे की बात है कि भाई इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती की बात हो और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर किया जाए, बाबा ये कैसे चलेगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर नहीं कीजिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके चेहरे पर ये जो जमा हो चुके होते हैं ना एक्नी प्रॉब्लम्स, या फिर आपके चेहरे पर जो ये एक्नी के निशानात होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनको आप कई टाइम से फेस कर रहे हैं लेकिन आपको सोल्यूशन का पता ही नहीं, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके उन तमाम चीजों को खत्म करना है अपनी स्किन से, और आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई सिद्रा इतना बताती है तो क्यों बताती है, क्योंकि भाई गाल में दम होता है, प्रोडक्ट में भी दम आए. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो सोना सोना थी वजह.

तव्हां सिंगार कया अथई सवा कुंवार लॻे थी तव्हांखे कुंवार लॻण जी ज़रूरत न आहे पर बसि तव्हां इन्हनि सिंगारनि खां थोरो पाण खे बचाइण चाहियो था छो त मेकअप जॾहिं तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कंदा न मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट तव्हांखे मिली सघनि था पर उन्हनि चीज़ुनि खे अगरि तव्हां साइड रखो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो साईं वाह वाह थी वेंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे मिले पियो तव्हां क़रीबी जनरल स्टोर ते वञो अगरि नथा मिलनि त पोइ तव्हां जल्दी जल्दी नंबर ते राबितो करे सघो था ऐं नंबर ते पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां ऐं जेको मां चई वियसि त बाबा मोटी अचां ब्रेक खां पोइ तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायां थी सो तव्हांखे नंबर हिकु हिकु करे ॿुधायांव थी तव्हां नोट करे वठो ठीकु आहे ओगणीह सौ पहिरियों नंबर आहे 43 5 2 5 9 7 ऐं ॿियो नंबर आहे 43 3 7 3 8 4 3 9 साउंड सो फनी

गानो साई भलो यो गानो वड़ी वयो मुख्य बुधाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर या को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल को फौरन बाद तवाजी चेहरे ते एडी खूबसूरती अची वे तवा मानू वरी वरी पुछंदा बुधायो तो सही डी खूबसूरती काडा आंदी अव उनके बुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो नंबर से राबतो करे वेठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम पाने के बुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले तो नंबर से

कैसी हो डियर स्वीटी? मैं बहुत अच्छी, तुम बताओ कैसी हो? मजे में और दर्दे दिल हमारा शो सुन रही हैं। थैंक यू वेरी मच दर्दे दिल। और मुनव्वर भाई बस कर जाएं, बस कर जाएं। महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए, आमीन आमीन आमीन। और कहते हैं कून से जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज, थोड़ो तहां के चढ़ में लेट थी भैया है।

के रहियो बाबा। सराज में जतोई भाई में सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाईजान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। दर्दे दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया हो गया। निदली कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ ये जियो करे।

फरमा की पसंद अच्छी है, अच्छी है। सुठा सुठा गाना फरमाइश कर दिया छोकरी। वरियाम कहते हैं सदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा। हाजिर हाजिर, बिल्कुल यो प्रोग्राम गानो मतलब तांजला शाम वाले प्रोग्राम में हलाई छड़ींदा से। ठीक है, याद कंदो थोड़ो जो। अच्छा, ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर, सो हम सुनेंगे। अच्छा, ये आपके कॉमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रीमेक्स में चल गया है। चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे।

क्या बात है, टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही ही नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि टी स्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए टी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं, बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में है। अच्छा मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर सालार सिकंदर हमारे साथ हैं, मुमताज वाले का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और सी है हमारे साथ एसन, कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात थी। उस टाइम कहते ना

अच्छा भाई, इरम की शादी है, इरम को शादी वाला गाना डेडिकेट कर देंगे, ठीक है? बाकी शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है, बताएं तो उन्हें बताइएगा जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, ये मेडिकेटेड फार्मूला है और 2-in-1 फार्मूला है, तो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। दिमागी दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर। इस गाने की फरमाइश हमें माहीन ने कर दी थी।

बस फिर अब्दुल्ला आप भी डी स्किन ब्यूरी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूरी क्रीम लगा रहे लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूरी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए।

अच्छा मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम VIP है, वो डायलॉग सुनाओ। सुनो जाना मैं बोलने ही वाली थी क्योंकि इस गाने के साथ मैंने एक शायरी रखी थी। What a coincidence। मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। तो मेरे पास एक शायरी है, वो जरा हम पढ़ लेते हैं।

सुनो जाना, तुम मेरी धड़कन हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों। तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो क्यों। तुम मेरी नजर का सुकून हो, कोई तुम्हें देखे तो क्यों। तुम मेरी आदत हो और कोई ये आदत अपनाए तो आखिर क्यों। तुम पे जो हक मेरा है वो किसी और का हो तो क्यों, फिर कैसे ना कहूँ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरी धड़कन हो, कोई तुम्हें महसूस करे तो आखिर क्यों।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: एक करोड़ रुपया भंग तलब अजीम सियाल जी गाड़ी पनो अकल जे कच्चे मा हाथ DIG सखर KTN News खानपुर मार जे रिपोर्टर अजीम सियाल जी अगवा जी तस्दीक करे छड़ी घरू वजीर ज़ियाल अंजार ऐं IG सिंध साफ़ीअ जे अॻुवा जो नोटिस वरितो DIG सखर खां रिपोर्ट तलब DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण चयो आहे त KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अॻुवा थियो आहे बाज़ियाबी लाइ संजीदा आहियूं ड्रोन कैमराउनि ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू करे छॾी आहे KTN न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जे बाज़ियाबी लाइ कलम धणी सरापा एहतजाज मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा घोटकी पनवाकिल तंगवाणी ठारू शाह मुरीद शाह डोकरी मीरपुर साकरो अठहठ मोरी गंबट मदहजी मुबारकपुर सगियूं ड्रिबमेयर शाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलम धरणनि पारां एहतजाज कयो वियो बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ फोर्सिस जो ऑपरेशन शोभान जारी 4 ॾींहनि दौरान 71 खां वधीक दहशतगर्द मारिजी विया ISPR मूजिबि 21 सेप्टेम्बर खां कोटिया जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कयो वियो ज़ियारत ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे तबाह कयो वियो रुगो ऑपरेशन शोभान में हेल ताईं 33 भारतीय इंसान पर दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि 23 दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि 25 सेप्टेम्बर ते नौशके में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्द मारिजी विया मंडीअ में 6 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे मक़दार में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस वॾी इलाइक़े खे क्लियरन कराए छॾियो ख़तरे खां महफ़ूज़ बणायो वियो भारतीय सरपरस्तीअ में अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ दहशतगर्दी शहरनि ऐं अमन लाइ ख़तरो बणियल आहे ईरान खे तजवीज़ुनि ते अमरीका खां बाज़ाबता तौर जवाब जो इंतज़ार ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराचीअ चयो आहे त अमरीकी सदर जो शुरूआती रदमल ॾिठो आहे ट्रियाकड़ी कंदड़नि तरफ़ां हतमी मौक़िफ़ ॼाण जा मुंतज़िर आहियूं पासदार इनकलाब चयो आहे त हिन भेरे दुश्मन जे जारियत जो जदीद हथियारनि सां जवाब ॾिनो वेंदो अमरीका वटि ॾखिण एशिया मां निकिरण खां सवाइ को ॿियो बि गस न आहे नई आलमी निज़ाम खे अमरीका जी पुराणी हैसियत में वापसि अचण जी ज़रूरत ऐं इजाज़त न ॾिनी वेंदी सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद खां कराचीअ पहुची वियो संदसि सदारत हेठि पीपल्स पार्टीअ जो इजलास जल्द थियण जो इम्कान PP चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी ऐं बलोचिस्तान जो वॾो वज़ीर सरफराज बुगटी बि कराची पहुतल सियासी मामलनि समेत नवनि सूबनि जे मामलनि ते गौर वीचार कयो वेंदो हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार खे पैसनि जी ॾेती लेती तां क़तल करण जो इनकशाह पुलिस पारां 2 मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा पुलिस ज़रियनि मूजिबि नरेश कुमार जे क़तल केस जे 2 मुख्य जवाबदारनि खे टंडोल अयार मां गिरफ़्तार कयो वियो नरेश कुमार खे कर्ज़ वापसि ॾियण बहाने घुराए क़तल कयो वियो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में दरियान जे आलमी ॾियारे ते सिंधुअ जे तहफ़ुज़ लाइ तक़रीबूं ऐं एहतजाज सिंध यूनाइटेड पार्टी पारां सिंधु तो में सावा मुंझो जे उनवान सां ठुल बाडर कोटड़ी ढोरो नारो सकरंड सेवण नवाब वली ममन जोई ऐं ॿियनि शहरनि में मुज़ाहिरा अॻवाणनि चयो त सिंधु दरिया ते धाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल न कबो

0: दड़ो में गुजरियल रात हथियारबंदनि जी फायरिंग में कत्ल थियल 15 वरनि जी निंगरीअ जो लाश रखी धरणो वारसन ऐं सवें शहरनि मक़तूल निंगरी मुर्क मेमण जो लाश पिंजारी पुल चौक ते रखी धरणो हयो। मुज़ाहिरीन जो बिना देर निंगरीअ जे कत्ल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतन के मखसूस बीमारियों हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम। यहाँ GFM 88 नेटवर्क
1: सूती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: सखर शहदादपुर रतो देरो बख्शापुर भान सैदाबाद न्यू सैदाबाद ठिकराठो कश्मोर डहर की जरवा रोहिड़ी कंबर कोटड़ी जी रात रहने जो मुतालबो

0: आतली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002935। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03132525786।
1: जी हा, 03135525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज।

0: पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

तोखे छा खपे सोपारी खपे मारड़ी तोखे छा खपे ओ चरी चौथो चंड थई छोटी छिरकी लेती चई चरी चौथो चंड थई।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: वाली हिन सिंध ते का एड़ी वराण वरे जो सुख्या डुबरा पाण में भाकुर विजूं भरे ही कायम रहे कयामत ताई मोहब्बत कड़ न मरे पंजल थियूं न परे जैसी जेरायूं जान में।

सदा शहर सिंध जे निज़ारन ते लिखबो, मेहरान जे मौजुन किनारन ते लिखबो, पटके अजरक टोपीअ वारन ते लिखबो, हारिन मज़दूरन मोचारन ते लिखबो, होशू हेमू दोदे पारन ते लिखबो, मुहन जे दड़े जे आसारन ते लिखबो, जंहिंजो प्यारा सिंध सां तन प्यारन ते लिखबो, ओ दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो, दीदार देस वारन दुलारन ते लिखबो।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
1: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 5 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: तो नाकाम सूबे में फुरू धाड़ा चोरियों अगवा ए इंसान जो कत्ल रोज जो मामूल बनल KTN News खानपुर महर के रिपोर्टर अजीम सियाल के अगवा किया वो बाजियाबी ला 1 करोड़ रुपया भुंग तलब पने आकिल के कच्चे मां गाड़ी हथ DIG सखर KTN News खानपुर महर के रिपोर्टर अजीम सियाल की अगवा की तस्दीक कर छी घरू वजीर ज़ियाल अंजार ए IG सिंध सहाफी की अगवा जो नोटिस वरतो DIG सखर का रिपोर्ट भी तलब DIG सखर नासिर आफ्ताब पठान चयो है तो KTN News के रिपोर्टर अजीम सियाल अगवा थो है बाजियाबी ला संजीदा आयु ड्रोन कैमरा जरिए मॉनिटरिंग शुरू कई है।

KTN न्यूज़ कानपुर में हर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलमदणी सरापा एहतजाज बणिजी विया। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, सखर, शहदादपुर, रतो देरो, बख्शापुर, भान, सैदाबाद, न्यू सैदाबाद, टिकराठो, कश्मोर, डहरकी, जरवार, रोहड़ी, कंबर, कोठरी जी, राधण, पनवाकिल, तंगवाणी, ठारू शाह, मुरीद शाह, डोकरी, मीरपुर साकरो, अछट, मोरी, गंबट, मदेजी, मुबारकपुर, सगियूं, ड्रिम, मेहर शाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलमदणनि एहतजाज कयो। साफ़ी अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो।

पाक बेरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो। नेवल चीफ हंगोर आबदोस की जंगी सलाहियतुन अमले की पेशेवरानी महारत की सराह कई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-8879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

कंटिन्यू करेंगे और एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक अच्छे से पैगाम के साथ आप लोगों के साथ आती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा शो होता है और कोई ना कोई न्यू टॉपिक और न्यू जो है बात सवाल कोई ऐसा मैं जरूर लेकर आती हूँ कि आप भी अपने ख्याल का इजहार खुलकर कर सके। तो जी बिल्कुल, आप लोग मुझे जो है कमेंट करके FB पेज पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और साथ साथ प्लीज शेयरिंग किया करें अपने प्यारों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त अहबाब को इस प्रोग्राम के बारे में जरूर बताएं। और इसके साथ आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 8881 पर, जिसके लिए आपने लिखना है SKR, अपना मैसेज टाइप करना है, देन आपने सेंड कर देना 8881 पर।

चाहिए तो इस मौसम में अपना भी ख्याल रखें अपने प्यारों का। तो जी आज के तहरीन लगता है दिल।

तुम कभी नहीं जानते कि कौन सा लम्हा तुम्हारी जिंदगी की आखिरी याद बन जाए। जिंदगी में हमेशा अलविदा कहने का एक जिंदगी हमेशा हमें अलविदा कहने का एक आखिरी मौका नहीं देती। शायद इसलिए कुछ लम्हों को मामूली समझकर हम गुजार देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी गफलत है ये, क्योंकि हमें खबर नहीं होती कौन सी मुलाकात आखिरी है, कौन सी गुफ्तगू आखिरी है और कौन सा लम्हा कल सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा हमारे लिए। जिंदगी रुखसत होने से पहले हमेशा किसी को भी अलविदा कहने की मोहलत नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती जी बिल्कुल। वाकई कितनी गहरी बात है, हम कितने लोगों को कितने लम्हों को मामूली समझकर छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि वही तो आखिरी बार था। अक्सर हमारी मुलाकात होती है, किसी से बात होती है और हम उसको ऐसे समझते हैं कि दोबारा मिलेंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि वाकई वो आखिरी वक्त था, वो आखिरी टाइम था। तो आवाज का रिश्ता वही प्रोग्राम में मैं एक अच्छा सा जो है ट्रैक प्ले कर रही हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं प्ले कर चुकी हूँ एक सॉन्ग अच्छा सा, और फाहे पाकिस्तानी सॉन्ग है और ये ड्रामा भी था एक, उसका ही ये सॉन्ग है, कभी अलविदा ना कहना काश हम जुदा ना होते। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको एंजॉय करें सॉन्ग को, साथ साथ मैं सवाल भी करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी आखिरी मुलाकात या आखिरी बात थी जिसे आपने इस वक्त मामूली समझा था, लेकिन आज वो सिर्फ एक याद बन के रह गई है। तो जी बिल्कुल मेरे साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं और साथ साथ ये आवाज के रिश्ते में पहला ट्रैक एंजॉय करें, फाखर की खूबसूरत सी आवाज मेरे प्रोग्राम में शामिल की है।

0: It's 5:30 p.m.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879-12-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा

0: सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03126।
1: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले फर्स्ट ट्रैक था अलविदा का, और इससे मतलब कि आप लोगों को किसकी याद आई, कुछ सताया, तो जी इसके साथ ही एक और नेक्स्ट ट्रैक भी प्ले कर देते हैं प्रोग्राम में। एक अच्छा सा सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ और ये पाकिस्तानी पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें पाकिस्तानी कास्ट हैं सारे, और ये सॉन्ग मैंने प्ले किया है दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है जी। बिल्कुल ये पाकिस्तानी फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म, इसमें ये मीरा के ऊपर, मतलब मीरा है एक्टर, इसके अंदर पाकिस्तान की मोस्ट फेमस एक्टर है ये भी, और फिल्म घर कब आओगे तकरीबन ये 90 की कुछ की फिल्म है, मतलब के 98 या फिर 97 में, मतलब ये फिल्म बनी है इनकी 1998-97। तो आप सब भी इसको एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय कर रही हूँ सॉन्ग। अच्छा, इसका एक जो सॉन्ग है इंडिया में भी बना है, तो मोस्ट लोग समझते हैं ये इंडियन सॉन्ग है, ये इंडियन नहीं है, पाकिस्तानी सॉन्ग है, पहले पाकिस्तान में बना है, इंडिया में इसकी कॉपी की गई।

फजल के जनाब आप लोग सुन रहे थे दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। ये फिल्म है ये घर कब आओगे, पाकिस्तानी फिल्म है और ये मैं मुझे सन याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी फिल्म है ये और स्टोरी बड़ी अच्छी है। अगर आप लोगों को मौका मिले तो जरूर देखिएगा ये फिल्म आप लोग। और इसका एक सॉन्ग मतलब ये सॉन्ग यही सॉन्ग इंडिया में कॉपी

0: हाँ तो आज तक लोग यही समझते हैं कि ये शायद इंडियन सॉन्ग ही रहेंगे, पाकिस्तानी, पहले पाकिस्तान में बना उसके बाद इंडिया में बना है। ऐसे बहुत से सॉन्ग हैं वक्तन फक्तन में, हर सैटरडे संडे ऐसे कोई ना कोई सॉन्ग भी किएंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी, पाकिस्तानी सिंगर्स एक्टर्स बहुत टैलेंटेड थे और हमारे पास राइटर्स की भी कमी नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हमारे होते हैं जो फिल्म निगार है, मतलब कि फिल्म लिखते हैं, ड्रामा निगार जो है ड्रामे लिखते हैं, बहुत टॉप पे जाते थे और उसी की अक्सर कॉपी इंडिया में होती थी, कॉपी करते इंडिया वाले। खैर वो चलता रहता है, फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, कॉपी कभी ना कभी ना कभी किसी ना किसी कॉपी करते। अच्छा जी टाइम हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ आवाज का रिश्ता। तब तक के लिए मुझे छोटा सा ब्रेक तो लेना है।
1: It's 5:45 PM. Just time check. It's 5:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।

0: या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद औरतन बीमारियन चेल मेंरी नहीं अल्ट्रासाउंड अनम साइलस
3: डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347 बट

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10%।

0: ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

सेंड कर दें तो मैं इजीली इसको ढूंढ लूंगी। तो इसके साथ ही एक और अच्छा सा ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ, राहत फतेह अली खान की इस खूबसूरत सी आवाज में, तेरे बिन जीना। जी बिल्कुल, ये मायरा खान की फिल्म का सॉन्ग है, बिन रोए फिल्म का ये सॉन्ग था, आई थिंक शायद ये वही है। तो मैंने प्ले कर दिया है आवाज के रिश्ते में, आप लोग इंजॉय करें। आवाज के रिश्ते में एक और सॉन्ग में प्ले कर चुकी, एक आवाज आप लोग की खिदमत में पेश कर चुकी हूँ, राहत फतेह अली खान की खूबसूरत सी आवाज में, पाकिस्तान के टॉप सिंगर। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करें इनको। और मुझे जरूर बताएं कि कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वक्त जब आपने सोचा कि ये काम आज नहीं करना, नहीं आता, वो लम्हा नहीं। क्या जिंदगी बाकी किसी को मौका देती, किसी को कोई मौका नहीं देती, आज तक तारीख में कभी किसी को ऐसा मौका नहीं मिला। चलें जी इंजॉय करें राहत फतेह अली खान की आवाज को, आवाज का रिश्ते में।

सिंध मां धाड़ियल राति जो ख़ात्मो ख़्वाब बणियल धाड़ियलनि जी सरेंडर पॉलिसी बि नाकाम। सूबे में फुरूं धाड़ा चोरियूं अगवा ऐं इंसाननि जो क़तल रोज़ जो मामूल बणियल। केटीएन न्यूज़ खानपुर मार जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अगवा, बाज़ियाबी लाइ 1 करोड़ रुपया भुंग तलब। पनवाकिल जे कचे मां गाॾी बि हथ, डीआईजी सखर केटीएन न्यूज़ खानपुर मार जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी अगवा जी तस्दीक करे छॾी। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार ऐं आईजी सिंध सहाफ़ी जे अगवा जो नोटिस वरितो। डीआईजी सखर खां रिपोर्ट तलब। डीआईजी सखर नासिर आफ़ताब पठाण चयो आहे त केटीएन न्यूज़ जो रिपोर्टर अज़ीम सियाल अगवा थियो आहे। बाज़ियाबी लाइ संजीदा आहियूं, ड्रोन कैमरा ज़रिए मॉनिटरिंग शुरू कई आहे। केटीएन न्यूज़ खानपुर महर जे रिपोर्टर अज़ीम सियाल जी बाज़ियाबी लाइ कलमदाणी सरापा एहतजाज बणियल। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। घोटकी, सखर, शहदादपुर, रतोदेरो, बख्शापुर, भान, सईदाबाद, न्यू सईदाबाद, ठिकराठो, कश्मोर, डहरकी, रोहड़ी, जलवार, कंबर, कोटलीजी, राधण, पनवाकिल, तंगवाणी, ठारूशाह, मुरीद शाह, डोकरी, मीरपुर साकरो, अठहठ, मोरी, गंबट, मदेजी, मुबारकपुर, सगियूं, ड्रिब, मेहरशाह ऐं ॿियनि शहरनि में कलमदड़नि पारां احتجاج कया विया। अज़ीम सियाल खे बाज़ियाब करण जो मुतालबो।

चइनि ॾींहनि दौरान 71 खां वधीक दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि 21 सेप्टेम्बर खां कोइटा जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन कयो वियो। ज़ियारत ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे थाकनि खे बि तबाह कयो वियो। रुगो ऑपरेशन शाबान में हेल ताईं 33 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। 23 दहशतगर्द मारिजी विया। 25 सेप्टेम्बर ते नौशकीअ में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। मिंट में 6 माण्हुनि खे ख़तरे खां महफ़ूज़ बणायो। भारतीय सरपरस्तीअ में अफ़गान सरज़मीन तां थींदड़ दहशतगर्दी शहरनि ऐं मुल्क लाइ ख़तरो बणियल। पाकिस्तान नूरिस्तान बाबति अफ़गानिस्तान जी दावा रद्द करे छॾी। अफ़गानिस्तान जे दिफ़ा वारी वज़ारत जो दावा कूड़ी करार। सुदसमा वारे फाकी वज़ारत मूजिबि अफ़गानिस्तान लॻायल इल्ज़ामनि जूं के बि शाहिदियूं पेश न आहिनि कयूं। नूरिस्तान में मुबैना तशद्दुद बाबति अफ़गानिस्तान जूं हक़ीक़तुनि जो अबतण ऐं कूड़ आहिनि। अफ़गान तालिबान रजीम पाकिस्तान ते इल्ज़ाम लॻाए अंदरूनी सिक्योरिटी सूरतहाल तां ध्यानु हटाइण चाहे थो। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी महफ़ूज़ थाक कंहिंखां लिकियल न आहिनि।

जवाब जो इंतजार ईरानी परदेही वजीर अब्बास राग़ची चयो त अमरीकी सदर जो शुरूआती रद्दअमल डि॒ठो आहे। ट्रैकड़ी कंदड़नि तरफ़ां हतमी मौक़िफ़ ॼाणण जो मुंतज़िर आहियूं। पासदारान इनकलाब चयो आहे त हिन भेरे दुश्मन जी जारियत जो जदीद हथियारनि सां जवाब ॾिनो वेंदो। अमरीका वटि ॾखिण एशिया मां निकिरण खां सवाइ ॿियो गस बचियो नाहे। नए आलमी निज़ाम खे अमरीका जी पुराणी हैसियत में वापसि अचण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।

कंहिंखे बि कानून हथ में खणण ऐं फसाद करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। सिंध हुकूमत हर साज़िश खे नाकाम बणाईंदी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त इल्ज़ाम हणण ऐं सियासी पॉइंट स्कोरिंग बदिरां मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। जलसनि ऐं जलूसनि जी इजाज़त हुजणु घुर्जे। अवाम खे परेशान न थियणु घुर्जे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कराची यूनिवर्सिटी रोड ते ठहंदड़ रेड लाइन बीआरटी मनसूबे जो मौसमियात फ्लाई ओवर जो बि इफ़्तिताह कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सिंध में एक चमकंदड़ सितारा।

0: रुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जी बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानू सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुरल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
0: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
0: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका।

0: ईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 7 ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए,
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
3: जी हाँ, 2315-2575-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: कंदा। डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

और ये जनाब जाने से पहले एक बार फिर से आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ आवाज के रिश्ते में, क्योंकि अब ये लास्ट वेलकम है, इसके बाद हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका हमारा सफर यहीं तक था आज का, शाम 5 से 7 बजे तक आपका हमारा साथ रहा है, और ये साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी रहेगा। सैटरडे संडे इस वक्त टाइम हो चुका है 5:56। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक अच्छा सा सॉन्ग, अच्छा सा ट्रैक मैं आप लोगों के लिए प्ले करके जाती हूँ। अच्छा जी, तो और एक मुझे मैसेज अभी रिसीव हुआ है थोड़ा, तो शायद में ना, तो ये सखर जैसे हमारे डेली के लिस्टर्स हैं, और इनकी फरमाइश भी दी, चले आपकी फरमाइश नेक्स्ट मुझे याद रहेगी। नेक्स्ट सैटरडे सबसे पहले आपकी फरमाइश ही पूरी करूंगी। ये जो सॉन्ग आपने मुझे कहा है, कहते हैं कि हाय कोमल खान कैसी हो, आप ठीक हो तो आप ठीक तो हो ना, जहाँ रहो मुस्कुराती रहो अपनों के साथ साथ साथ साथ, वॉइस प्यारी है आपकी, आई एम अब्दुल रहीम। अच्छा जी, तो जी आप सिटी का तो नेम आपने कर नहीं लिखा, लेकिन बहुत खुशी है कि आपने हमारे शो को पसंद किया, कि आप लोग की चाहत और मोहब्बत है कि भाई हम लोग आते हैं और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेरी दुआ है कि आप लोग भी, आप सब भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी रहें, और अल्लाह ताला अपने ज़मान में आप सबको रखे। और आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, नेक्स्ट सैटरडे संडे में आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। इसके साथ ही छठी हमारे साथ कहते हैं मरहबा, मरहबा का टाइम नहीं है अब, गुड बाय कहने का टाइम है, खुश आमदीद कहने का टाइम है। तो जी बिल्कुल, बस अब मैं जो हूँ टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। थोड़ी सी जो लाइन मुझे कहनी है वो कह दूँ मैं। अच्छा चलें, तो जी अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है, शाम 5 से 7 बजे का ये सफर आप लोगों की खूबसूरत कमेंट और मैसेजेस के साथ बहुत प्यारा गुजरा और यहीं तक का था। तो जाते जाते बस एक ही बात कहूंगी, कुछ लोगों को कुछ लम्हों को अलविदा कहने से पहले संभाल लिया करें, क्योंकि हर बार जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती, बिल्कुल भी जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। तो जी बिल्कुल, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे कमल खान, आवाज के रिश्ते में सखर से लाइफ आप लोगों के साथ ही। तो जी अब आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी सैटरडे संडे शाम 5 से 7 बजे तक, नए टॉपिक के साथ, नए ख्यालात के साथ, नए और लिसनर्स के साथ, और आप लोग भी साथ साथ होंगे। जिनकी फरमाइश अभी रह गई है नोट कर लिए, नेक्स्ट सैटरडे मैं उनकी फरमाइश जरूर शामिल करूंगी। अच्छा जी, आज की शाम उन लम्हों के नाम, आज की शाम उन लम्हों के नाम कर दी है, जिन्हें हम उन लम्हों के नाम की जिन्हें हमने कभी मामूली समझा था। तो कोई लम्हा मामूली ना समझें, और आवाज के रिश्ते में अब मुझे अपने आरजे कमल को इजाजत दीजिएगा। जाने से पहले हमेशा से एक अच्छा सा सॉन्ग मैं प्ले करती हूँ, जो मैं प्ले कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए रात को दिल खाने खूबसूरत सी आवाज में, मोहब्बत तुमसे नफरत है। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ अपने आरजे कमल खान को इजाजत दीजिएगा। घर से इंशाल्लाह आप लोगों से सैटरडे संडे मुलाकात होगी शाम 5 से 7 बजे तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के पान।

डीआईजी सखर केटीए न्यूज खानपुर महाराज रिपोर्टर अजीम सयाल की अगवा की तस्दीक कर छी। गरु वजीर ज़ियाल अंजार आईजी सिंध सहाफी की अगवा जो नोटिस वरतो। डीआईजी सखर का रिपोर्ट तलब। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान केटीए न्यूज के रिपोर्टर अजीम सयाल के अगवा किया वो है। बाजियाबी लाइ संजीदा आयू ड्रोन कैमरान जरिए मॉनिटरिंग शुरू कई है। केटीएन न्यूज खानपुर महर के रिपोर्टर अजीम सयाल की बाजियाबी लाइ कलम धरणी सरापा एहतजाज बणियल मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा धरना। घोटकी सखर शदादपुर रतोदेरो बख्शापुर भान सईदाबाद न्यू सईदाबाद ठिखराठो कश्मोर डहरकी जरवार रोहड़ी कंबर कोठडिजी राधण पनो आकिल तंगवाणी थारू शाह मुरीद शाह डोकरी मीरपुर साकरो अठहठ मोरी गंबट मदेजी मुबारकपुर सगियूं डिमेहर शाह बेन शहर में कलम धरण एहतजाज किया। साफी अजीम सयाल के बाजियाब कराने जो मुतालबो। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में दहशतगर्दन खिलाफ फोर्सिस जो ऑपरेशन जारी। चैन डीह दौरान 71 का दहशतगर्दन के मारे वो। आईएसपीआर मूजिब 21 सेप्टेम्बर का कोयटा के मुख्तलिफ इलाकन में ऑपरेशन किया वो। ज़ियारत ए भरपासे में दहशतगर्दन के थाकन के निशानो बनाया वो। रुगो ऑपरेशन शाबान में हेल ताई 33 स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारजी वया। 25 सेप्टेम्बर ते नोशकी में ऑपरेशन दौरान 11 दहशतगर्दन के मारे वो। मंड में 6 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया वो। मारजी वाल दहशतगर्दन वटा वे मकदार में हथियार ए बारूदी मवाद बेत किया वो है। सिक्योरिटी फोर्सिस व इलाके के क्लियर कर मानन के खतरे का महफूज बनाया। भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन तथींदड़ दहशतगर्दी शहर नमून लाइ खतरो बणियल। पाकिस्तान नूरिस्तान बाबत अफगानिस्तान की दावा रद्द कर छी। अफगानिस्तान की दिफा वाली वजारत जो दावाओं कूड़ियों करार। सुत समा वफाकी वजारत मूजिब अफगानिस्तान लगायल इल्जाम जो के भी शायदियों पेश नाहन कयूं। नूरिस्तान में मुबैना तशद्दुद बाबत अफगानिस्तान जो दावाओं हकीकतों के उबतड़ कूड़ियों आन। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान से इल्जाम लगाए अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से ध्यान हटाने चाहे तो। अफगानिस्तान में दहशतगर्दन की महफूज थाकन कहीं का लिखल ना है।

ईरान पारां समुंड में अमरीकी जासूस आबदोज के हथ करण जी दावा वीडियो पे जारी कई वई। ईरानी अख़तरनि मूजिब अमरीकी जासूस आबदोज के सालिम हालत में हथ कयो वियो आहे। अमरीकी आबदोज ईरानी समुंड में बारूदी सुरंगनि बाबति जासूसी करे रही हुई। पकड़ियल अमरीकी जासूस आबदोज जी मालियत 10 मिलियन डॉलर आहे।

कंहिंखे बि कानून हथ में खणण ऐं फसाद कराइण जी इजाज़त न ॾींदासीं। सिंध हुकूमत हर साज़िश खे नाकाम बणाईंदी। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण चयो आहे त इल्ज़ाम हणण ऐं सियासी पॉइंट स्कोरिंग बदिरां मसइलनि जे हल ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। जलसनि ऐं जलूसनि जी इजाज़त हुजणु घुर्जे। अवाम खे परेशान न थियणु घुर्जे। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण कराची जी यूनिवर्सिटी रोड ते ठहंदड़ रेड लाइन BRT मनसूबे जे मौसमियात फ्लाईओवर जो इफ़्तिताह कयो। पाक बहरिया जे अब्दोज हिंगोर पारां अरबी समुंड में पहिरीं लाइव वेपन फायरिंग जो कामयाब तजुर्बो। PNSM हिंगोर डिघी मुफ़ासिले ताईं मार कंदड़ एंटी शिप क्रूज मिज़ाइल कामयाबी सां फायर कयो। ISPR मूजिब एंटी शिप क्रूज मिज़ाइल हदफ़ खे कामयाबी सां निशानो बणायो। पाक बहरिया जे सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ लाइव वेपन फायरिंग जो मुशाहिदो कयो। नेवल चीफ हिंगोर अब्दोज जंगी सलाहियत ऐं अमले जी पेशेवरानी महारत जी वाखाण कई।

हैदराबाद में वापारी नरेश कुमार के पैसनि जी ॾेती लेती सां क़तल करण जो इंकशाफ़, पुलिस पारां बल मुख्य जवाबदार गिरफ़्तार करण जी दावा। डीआईजी ऐं एसएसपी हैदराबाद चयो आहे त जवाबदारनि खे टंडो जाम ऐं टंडो अलिहार मां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। ॾेती लेतीअ सां वकास मुगल ऐं असद धमाछ नरेश खे क़तल कयो। नरेश कुमार जा वकास मुगल ॾांहुं घणा पैसा रहियल हुआ। वकास मुगल असद धमाछ खे 10 लखनि जो आसिरो ॾेई नरेश खे क़तल करायो।

0: कराची के दखण जिले में रात शहीद थियल पुलिस अहलकार वे वाके में आला पुलिस ऑफिसरन की गफलत साबित। शेरीन जना कॉलोनी में पुलिस अहलकार की शहादत डीआईजी दखण असद रजा और एसएसपी महजूर अली की कारकर्दगी से सवाल उथारे छड़ा। गरू वजीर जयाल अंजार के हुक्मन के भी नजरअंदाज कर मामूल बनाए छो। शहीद अहलकार के गरू वजीर पारा तय थियल एसओपीज के नजरअंदाज कर मंशियात फरोशन की गेड़ में मोकलने का इंकशाफ। तय थियल एसओपीज मुकम्मल तौर से नजरअंदाज कर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाज GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर

0: 8631 6163.
1: केश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
0: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786।
1: जी हाँ 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
2: करो छो।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2331-2525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि खिलाफ़ कार्रवाई जो सख़्त फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं एडीपी मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अदावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे पंजनि साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिं में इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशरे जे समूरनि तबक़नि जी नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिण ख़ासि ध्यानु ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुल मोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तलु थियो हो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादण मुस्मान सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबख्श कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबख्श सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुंहिंजे अमड़ जो भाउ हो। उन हितां भाउ नाराज़ थी ख़ुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो।
इरादो रखूं था जॾहिं पंजनि अहम मनसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिश आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुगो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितर सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं खोराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइण, ग़िज़ाइयत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पायदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻ 80 मिलियन डॉलर जी ग्रांट फराहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठट्टे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइयत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइयत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइयत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी, पायदारी तरक़ीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं खु़शहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंधु हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमाल ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ हिकमत अमली तयार करे वरिती आहे। खातनि मां बदली या रिटायर थींदड़ आफ़ीसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह कानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खेनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमाल कंदड़ आफ़ीसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल आफ़ीसरनि जी अपडेट लिस्ट तयार कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़खुर ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैम्प बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूद जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैम्प ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिट जे जनाज़े जी रैली पिण कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराची तरफ़ प्यादल मेरिट लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त हुन जी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान झिरक ऐं ठट्टे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघे थो। एडवोकेट इज़हार हुसैन चांग चयो त सॼी सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फ़ैसिले, मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25-30 सेप्टेम्बर 2026 तई कलम 144 लागू करे छोड़ो है। हुकूमत तहत 5 या वधिक माण्हुनि जे गद थियण, एहतजाजी रैलिन, जलसन ए जुलूसन ते पाबंदी हूंदी। हुकूमत जो मौकफ है त ही कदम अमन अमान बरकरार रखण ए कंहिं बि अणवणंदड़ सूरत हाल खां बचण लाइ खयो वियो आहे। पर हिन फैसले सां गॾु केतिराई अहम सवाल बि साम्हूं आया आहिनि। सियासी ऐं समाजी हलकनि जो चवण आहे त जेकॾहिं वाकई को मखसूस सिक्योरिटी खतरो मौजूद आहे त उन बाबति अवाम खे वाज़े ॼाण ॾिनी वञे। रुगो आम पाबंदी लॻाइण सां बेयकीनी ऐं मुंझारो वधी सघे थो। सिंध में हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियूं एहतजाजनि जी तयारी करे रहियूं आहिनि, जॾहिं त क़ौम परस्त जमायतूं बि पंहिंजे मुतालबनि जे लाइ मुज़ाहिरनि जा ऐलान करे चुकियूं आहिनि। अहिड़े पस मंज़र में कलम 144 खे कुझु हल्का सियासी छिकताण सां बि जोड़े रहिया आहिनि, जॾहिं त हुकूमत उन खे ख़ालिस इंतज़ामी ऐं हिफ़ाज़ती क़दम करार ॾेई रही आहे। कानूनी माहिरनि मूजिबि कलम 144 हंगामी हालतुनि जे लाइ हिकु आर्ज़ी कानूनी अख़्तियार आहे, जंहिं जो इस्तेमाल ज़रूरत ऐं तनासुब जे उसूलनि तहत थियणु घुर्जे। पुरमन एहतजाज ऐं तशद्दुद वारी सरगर्मीअ में फ़र्क़ु बरक़रार रखण बि जमहूरी निज़ाम जो अहम हिसो आहे। हाणे नज़रूं हुकूमत ते आहिनि त छा उहा पाबंदी बाबति वधीक वज़ाहत जारी कंदी या हालतुनि जी बेहतरीअ सां उन में नरमी आंदी वेंदी। अमन अमान बरक़रार रखण सां गॾु शहरनि जे बुनियादी हक़नि जो तहफ़ुज़ बि रियासत जी अहम ज़िमेवारी आहे। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ

खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रोबीज फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2576।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज हलाइंदड़नि खिलाफ़ कार्रवाई जो सख़्त फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं एडीपी मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अदावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे पंजनि साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जी बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीजननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिं में इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई त फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे मौसर अंदाज में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशरे जे समूरनि तबक़नि जी नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिण ख़ासि ध्यान ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुल मोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तलु थियो हो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादड़ मुस्मान सदोरी अदालत में बयान मटाए चयो त मौलाबख्श कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबख्श सदोरी जो सॻो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज़ भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुंहिंजे अमड़ जो भाउ हो। उन हितां भाउ नाराज़ थी ख़ुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको इरादो।
इरादो रखूं था। जॾहिं पंजनि अहम मंसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिश आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुगो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितर सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदादकोट में पीपुल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं खोराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइण, ग़िज़ाइयत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पायदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻ 80 मिलियन डॉलर जी ग्रांट फराहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइयत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइयत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिणु जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइयत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक़ी पायदारी तरक्कीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं ख़ुशहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंधु हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमाल ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ हिकमत अमली तयार करे वरिती आहे। खातनि मां बदली या रिटायर थींदड़ आफ़ीसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह कानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी खेनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमाल कंदड़ आफ़ीसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल आफ़ीसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़खुर ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त संदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैम्प बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूद जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैम्प ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिण कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराची तरफ़ प्यादल मेरिड लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि थियो त हुन जी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान झिरक ऐं ठटे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघिजे थो। एडवोकेट इसरार हुसैन चांग चयो त सॼी सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फैसले मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: केश ऐं प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4:00 खां 10:00 ऐं हर आचर ते सुबुह 10:00 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक, मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125257866।
5: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी।

0: थी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सकंदा। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ हलाईंदड़नि खिलाफ़ कार्रवाई जो सख़्त फ़ैसिलो। बाबा जे कातलनि खे छो बचाई, नवाब शामी नौजवान आपघात करे छॾियो। सिंध सरकार ऐं एडीपी मी कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ऐं स्कूलनि जी अदावत ते इतफ़ाक़। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध जे पंजनि साहिली ज़िलनि में 2.5 लख शागिर्दनि खे मांझांदो कराइण जो ऐलान, एग्रीमेंट थी वई। सिंध हुकूमत पारां रिटायर्ड कामोरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जो हुकुम। शागिर्दनि जो सिंध हुकूमत खे अल्टीमेटम, मेरठ जे बहालीअ जे लाइ शागिर्दनि जो 9 अक्टूबर ते हैदराबाद खां कराचीअ ताईं प्यादल लॉन्ग मार्च जो ऐलान। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध जे 3 वॾनि डिवीज़ननि में कलम 144 लागू, अमन अमान या सियासी एहतियात। सिंध हुकूमत पारां फेक न्यूज़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो, NCCIA खां मदद तलब। उन हवाले खां काल्ह सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे सदारत हेठि इतलात खाते जो अहम इजलास थियो, जंहिं में इतलात वारे सेक्रेटरी काशिफ गुलज़ार शेख ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास दौरान फेक न्यूज़, कूड़ी ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात जी रोकथाम, जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए मीडिया मॉनिटरिंग ऐं सिंध हुकूमत जे मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर बनाइण बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। इजलास में सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण हिदायत कई फेक न्यूज़ जी रोकथाम जे लाइ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खां सहकार हासिल कयो वञे। फेक न्यूज़ ठाहींदड़नि ऐं पखेड़ींदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जे लाइ लाॻापियल इदारनि सां मौसर सहकार खे वधीक वधायो वञे। हुन चयो त कूड़ियुनि ऐं गुमराह कंदड़ मालूमात ज़रिए कंहिं बि शख़्स या इदारे खे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिश बर्दाश्त न कई वेंदी। हुन इतलात वारे सेक्रेटरी ऐं समूरनि शोबनि जे डायरेक्टरनि खे हिदायत कई त मेन स्ट्रीम ऐं सोशल मीडिया ते जदीद टेक्नोलॉजी जी मदद सां फेक न्यूज़ जी रोज़ानी बुनियाद ते मॉनिटरिंग कई वञे। हुन चयो त फेक न्यूज़ जे बरवक़्त निशानदही, तस्दीक ऐं तदारुक जे लाइ इतलात खाते में हिकु मौसर ऐं मरबूत मॉनिटरिंग निज़ाम जोड़ियो वञे, जॾहिं त फेक न्यूज़ जे तदारुक लाइ इतलात खाते ऐं NCCIA विच में सहकार खे वधीक मज़बूत बणायो वञे। हुन चयो त सिंध हुकूमत जो बयानियो अमन, रवादारी, बेनल सूबाई हम आहंगी ऐं क़ौमी इतिहाद ते ॿधल आहे। हुन हिदायत कई त सिंध हुकूमत जे हिन मुस्बत ऐं तामीरी बयानीअ खे वधीक मौसर ऐं मज़बूत बणाइण लाइ इज़ाफ़ी क़दम खया वञनि। इतलात खातो डिजिटल प्लेटफॉर्मनि मां भरपूर फ़ाइदो वठंदे सिंध हुकूमत जे मुस्बत क़दमनि ऐं अवामी भलाई जे मनसूबनि खे अंदाज में उजागर करे। हुन हिदायत कई त मुआशरे जे समूरनि तबकनि जी नुमाइंदनि खे सिंध हुकूमत जे बयानीअ जो हिसो बणायो वञे। इतलात खातो फेक न्यूज़ जी मॉनिटरिंग सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत जे मुस्बत बयानीअ जी मौसर तशहीर ते पिण ख़ासि ध्यान ॾिए। नवाब शामी 24 सालनि जे नौजवान दीदार भंगवार पंहिंजी अमड़ सदोरीअ सां कावड़ जी पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी। 9 महीना अॻु दीदार जो वालिद गुलमोहम्मद भंगवार मोरो भरिसां क़तलु थियो हो। काल्ह सुनवाई दौरान जवाबदार मौलाबख्श भंगवार पेश थियो। केस जी फरियादन मुस्मान सदोरी अदालत में बयान मटाए छो त मौलाबश्क कातिल न आहे। वाज़े रहे त मौलाबश्क सदोरी जो सगो भाउ ऐं मक़तूल दीदार जो मामू हो। होॾां दीदार भंगवार जे भाउ परवेज भंगवार चयो त मुंहिंजी अमड़ बाबा जे कातिल खे बचायो, जेको मुंहिंजे अमड़ जो भाउ हो। उन हितां भाउ नाराज़ थी ख़ुदकुशी कई। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं एशियाई तरक़ियाती बैंक में सिंध जे सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कराची सर्कुलर रेलवे जी बहाली ते इतफ़ाक़। काल ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त ADB जे माली मदद सां हलंदड़ SSAIP तहत 10 नवां अॼियल सेकेंडरी स्कूलनि जूं इमारतूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि, जॾहिं त सिंध जे 10 ज़िलनि में 116 जदीद सेकेंडरी स्कूल ब्लाक अॾिया वेंदा। डिसंबर ताईं 200 खां वधीक स्कूल ऐं ईंदड़ महीननि में मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि तहत 800 खां वधीक स्कूल मुकमल करण जो पको
इरादो रखूं था। जॾहिं पंजनि अहम मंसूबनि में 2630 सेकेंडरी स्कूल जे उस्तादनि जी तरबियत मुकमल कई वई आहे। सूबे जे 7 तालीमी बोर्डनि में इम्तिहानी सुधारा लागू कया विया आहिनि। इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे लाइ टर्म्स ऑफ रेफरेंस खे हतमी शिकिल ॾियण, ज़मीन जी दस्तियाबी जी तसदीक ऐं प्रोजेक्ट डिज़ाइन जे कम खे अॻिते वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते 500 इलेक्ट्रिक बसुनि जी ख़रीदारी जी समरी सिंध काबीना खे उमाणे छॾी। उन हवाले सां सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सिंध काबीना जे मंज़ूरीअ खां पोइ सूबे जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में नयूं इलेक्ट्रिक बसूं हलायूं वेंदियूं। सिंध हुकूमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट जे निज़ाम खे वधाए रही आहे। असांजी कोशिश आहे त जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत रुगो कराचीअ ताईं महदूद न रहे। नवनि रूटनि जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती ऐं बहितर सफ़री सहूलियत ॾियणु आहे। हुन चयो त 50 डबल डेकर बसूं 30 नवंबर ताईं कराची पहुची वेंदियूं, जिन खे मुख़्तलिफ़ रूट्स ते हलायो वेंदो। डबल डेकर बसुनि सां मुसाफ़िरनि खे इज़ाफ़ी सफ़र जी गुंजाइश मिलंदी। हुन चयो त लाड़काणे कंबर शहदाद कोटनी पीपुल्स बस सर्विस शुरू करण सां अवाम तरफ़ां भरपूर मोट मिली रही आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह ऐं खोराक वारे आलमी इदारे WFP में स्कूलनि में शागिर्दनि खे मानी खाराइण, ग़िज़ाइयत, मौसमियाती लचक, अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दमनि ऐं समाजी तहफ़ुज़ जे शोबे में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। सिंध पायदार स्कूल खाधो प्रोग्राम इजलास जो मर्कज़ रहियो। उन प्रोग्राम जे लाइ लॻभॻ 80 मिलियन डॉलर जी ग्रांट फराहम कई वई आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त सिंध जे 5 ज़िलनि खियामाड़ी, मलीर, सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान जे 1336 सरकारी स्कूलनि जे 2.5 लख शागिर्दनि खे लंच फराहम थींदी। सेव दी चिल्ड्रन इंटरनेशनल पारां सिजावल, ठटे ऐं टंडो मोहम्मद खान में प्रोग्राम ते अमल दरामद कंदो। खियामाड़ी ऐं मलीर में WFP जो प्रोग्राम 614 स्कूलनि जे 1 लख शागिर्दनि खे 5 सालनि दौरान फ़ाइदो पहुचाईंदो। प्रोग्राम तहत स्कूलनि में खाधे जी फराहमीअ सां गॾु वाश सहूलियतुनि जी बहाली, ग़िज़ाइयत बाबति तालीम, ख़ुराक जे तहफ़ुज़ ऐं सफ़ाई, ॿारनि जे तहफ़ुज़ ऐं तालीमी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियणु शामिल आहे। इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम लाइ WFP जे सहकार, माउ ऐं ॿार जी ग़िज़ाइयत, शदीद ग़िज़ाई खोट जी कम्यूनिटी सतह ते इंतज़ाम ऐं मौसमियाती लचक बाबति मनसूबनि जो पिण जाइज़ो वरितो वियो। इजलास में वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त ख़ुराक, ग़िज़ाइयत ऐं इंसानी सरमाए जी तरक्की पायदारी तरक्कीअ जा बुनियादी थंभ आहिनि। स्कूल खाधो प्रोग्राम ॿारनि जे मुस्तक़बिल में सीड़पकारी आहे। ग़िज़ाई खोट खे मोह ॾियण ऐं स्कूलनि में ॿारनि जी हाज़िरी बहितर बनाइण जे लाइ सिहतमंद ऐं खु़शहाल सिंध जो बुनियादु रखियो पियो वञे। सिंध हुकूमत पारां सरकारी गाॾियुनि जी गैरक़ानूनी इस्तेमाल ऐं कब्ज़े ख़िलाफ़ हिकमत अमली तयारु करे वरिती आहे। खातनि मां बदली या रिटायर थींदड़ आफ़ीसरनि खां सरकारी गाॾियूं वापसि कराइण जे लाइ लाॻापियल खातनि खे हिदायतूं जारी कयूं वयूं आहिनि। उन हवाले सां काल्ह कानून खाते पारां समूरनि सरकारी खातनि जे सेक्रेटरियुनि खे ख़त लिखी कनि हिदायत कई वई आहे त गैर लाॻापियल ऐं गैर क़ानूनी तौर ते गाॾियूं इस्तेमाल कंदड़ आफ़ीसरनि खां गाॾियूं वापसि वरितियूं वञनि। खाते खे उहा बि हिदायत कई वई आहे त सरकारी गाॾियुनि जी रजिस्ट्रेशन, मौजूदा लोकेशन ऐं लाॻापियल आफ़ीसरनि जी अपडेट लिस्ट तयारु कई वञे। सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी 9 अक्टूबर ते कराचीअ ॾांहुं प्यादल लॉन्ग मार्च करण जो ऐलान करे छॾियो। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी जे कन्वेनर ज़ुबी अला मस्तोई, फ़खुर ज़मा खुहारो ऐं ॿियनि हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त सदन जिदोजहद खे 65 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, जॾहिं त एहतजाजी कैम्प बि 65 ॾींहं गुज़रण बावजूद जारी आहे। हुननि चयो त मशल बरदार रैली नसीम नगर चौक खां SPPS जे साम्हूं एहतजाजी कैम्प ताईं कढी वई, जॾहिं त मेरिड जे जनाज़े जी रैली पिण कढी वई। हाणे 9 अक्टूबर ते जुमे जे ॾींहुं कराची तरफ़ प्यादल मेरिड लॉन्ग मार्च कयो वेंदो। हुन चयो त लॉन्ग मार्च कराची पहुची CM हाउस तरफ़ वेंदो ऐं उते एहतजाज कयो वेंदो। लॉन्ग मार्च दौरान खेनि कुझु बि चयो त हुन जी ज़िमेवार सिंध हुकूमत हूंदी, जॾहिं त ईंदड़ हिकमत अमली कराचीअ में लॉन्ग मार्च दौरान तय कई वेंदी। हुन चयो त सिंध स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी जो प्यादल लॉन्ग मार्च हैदराबाद मां निकरंदो ऐं टंडो मोहम्मद खान झिरक ऐं ठटे खां थींदो कराची पहुचंदो। हुन चयो त जेकॾहिं सिंध हुकूमत सदन समूरा मुतालबा मञी वठे थी त लॉन्ग मार्च रोके सघे थो। एडवोकेट इशार हुसैन चांद चयो त सॼी सिंध जा वकील पहिरें ॾींहं खां शागिर्दनि सां गॾु आहिनि ऐं शागिर्दनि जे हर फैसले मार्च ऐं एहतजाज में साणनि गॾु हूंदा।

पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु हुकूमत कराची, हैदराबाद ए सखर डिवीजन में 25-30 सेप्टेम्बर 2026 तई कलम 144 लागू कर छो है। हुकूमत तहत 5 या मान जे गद थियण, एहतजाजी रैलिन, जलसन ए जुलूसन से पाबंदी होंदी। हुकूमत जो मौकफ है त ही कदम अमन अमान बरकरार रखण ए कें भी अणवणंदड़ सूरत हाल का बचण लाय खयो वियो है। पर इन फैसले सां गॾु केतिराई अहम सवाल भी सामू आया आहिनि। सियासी ऐं समाजी हलकनि जो चवण आहे त जेकॾहिं वाकई को मखसूस सिक्योरिटी खतरो मौजूद आहे त उन बाबति अवाम खे वाज़े ॼाण ॾिनी वञे। रुगो आम पाबंदी लॻाइण सां बेयकीनी ऐं मुंझारो वधी सघे थो। सिंध में हिन वक़्तु मुख़्तलिफ़ सियासी धुरियूं एहतजाजनि जी तयारी करे रहियूं आहिनि, जॾहिं त क़ौम परस्त जमायतूं बि पंहिंजे मुतालबनि जे लाइ मुज़ाहिरनि जा ऐलान करे चुकियूं आहिनि। अहिड़े पस मंज़र में कलम 144 खे कुझु हल्का सियासी छिकताण सां बि जोड़े रहिया आहिनि, जॾहिं त हुकूमत उन खे ख़ालिस इंतज़ामी ऐं हिफ़ाज़ती क़दम करार ॾेई रही आहे। कानूनी माहिरनि मूजिबि कलम 144 हंगामी हालतुनि जे लाइ हिकु आर्ज़ी कानूनी अख़्तियार आहे, जंहिं जो इस्तेमाल ज़रूरत ऐं तनासुब जे उसूलनि तहत थियणु घुर्जे। पुरमन एहतजाज ऐं तशद्दुद वारी सरगर्मीअ में फ़र्क़ु बरक़रार रखण बि जमहूरी निज़ाम जो अहम हिसो आहे। हाणे नज़रूं हुकूमत ते आहिनि त छा उहा पाबंदी बाबत वधीक वज़ाहत जारी कंदी या हालतुनि जी बेहतरीअ सां उन में नरमी आंदी वेंदी। अमन अमान बरकरार रखण सां गॾु शहर जे बुनियादी हक़नि जो तहफ़ बि रियासत जी अहम ज़िमेवारी आहे। हीउ हुयो हिन वक़्त जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।